सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

0: पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: हम अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं, पर हम कभी भी फुर्सत में और पूरी सजगता के साथ दिमाग से 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं और न उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। हाँ, तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं? आप देखेंगे कि आपका दिमाग निरंतर बिना रुके हुए सक्रिय बना रहता है। आप ध्यान पूर्वक इसकी गतिविधि को देखिए। मस्तिष्क के साथ संपर्क स्थापित करने और इसके समृद्ध कोष की ओर देखने के लिए समर्थ होने में थोड़ा समय लगता है। पेचकस को घुमाने पर शीशी की डांट धीरे धीरे बाहर आ जाती है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोहो उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने इस सोपान को पार किया है, अब आप इस स्थिति में हैं कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए। हम जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में बसने वाले विचार प्रकट होने लगते हैं। हमको विदित होता है कि हमारे पास मानसिक विकारों का कितना बड़ा खजाना है। इस खजाने से साक्षात्कार होने पर हम शुरू में तो घबराने लगते हैं, परंतु धीरे धीरे उनका आवेग कम होने लगता है। यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मस्तिष्क हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक निश्चित समय पर ध्यान द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है और हमारी इच्छा अनुसार विचार उत्पन्न करने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो आवेग मुक्त हो जाता है, हम भी आवेग मुक्त हो जाते हैं, लगाम की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्वाह सरल नहीं है। ये हमारे सामने हमारा विकृत रूप प्रस्तुत करती है, जिससे दो चार होने के लिए हमें साहस बटोरना पड़ता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ध्यान का महत्व के संबंध में विचार, वाचक स्वर था सुशील त्यागी का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं गणेश वंदना। एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम विघ्ननाशकारम देवम हिरम प्रणाम्यम। एक दांत वाले, बड़े से शरीर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं और सुनते हैं समोह स्वर में ये भक्ति रचना।

सच्चे मन से की गई प्रार्थना, आराधना, उपासना उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा तक अवश्य ही पहुंचती है। और वो अदृश्य शक्ति प्रभु सत्ता हमें सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम भी उस प्रभु का गुणगान करें।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के स्वर में ये भजन।

आतुलितबलधामं हेम शैलापदेहं धनुजीवन कृशानुनाम ज्ञानीनाम गृहं सकल गुणानिधानं वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाजातं नमामि वाजातं नमामि। आइए राम भक्त पवन सुत हनुमान को नमन करते हुए सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये आरती।

रजिया बानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे नाद। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पदपाठ। कलाकार थी भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:10 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं श्रीमती राजकुमारी का काव्य पाठ। दोपहर 12:30 पर अनन्य मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंडल, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों की मुख से रचनाएं बाल गीत और सुश्री मनीषा अग्रवाल से बाल कहानी यादगार दुनिया। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे श्रोताओं की अनुरोध माँ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा श्री PC जोशी के साथ भेंट वार्ता, विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पीयूष कश्यप से ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए ब्रज के लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 का समय रहेगा सामुदायिक गान का। आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर सुनिएगा कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे सुबह 9 बजे, जिसमें आज की थीम रहेगी आकाशवाणी का सफर आपके साथ। भूले बिसरे गीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:10 पर और फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे 10:12 पर। दिन में 11 बजे 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:10 पर, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत और शाम को 7:40 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह की 6:55 होने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली की।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षो में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये थे लता मंगेशकर और मन्ना डे। फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीत था शैलेंद्र कौर, संगीत शंकर जय किशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत। आवाज़ें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है प्यासा। बोल हैं साहिल उद्यानवी की और धुन एसटी बर्मन की है।

अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कवि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त होगी। मूल तैनाती पर लौटेंगे शिक्षक कर्मचारी। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों पर उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भी अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता नहीं बल्कि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। उनकी रचनाएं समाज को दिशा देने, जनचेतना जगाने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमि रही है। उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गिरीश दिवारी गिरदा, शैलेश मटियानी, गौरा पंत शिवानी और मोहन उप्रेती जैसी साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार कुमार विश्वास, अशोक चक्रधर और हरिओम पवार सहित विभिन्न साहित्यकारों तथा कवियों को सम्मानित किया। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रही है। आज की कड़ी में बात करते हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना की। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड सहित देश के सीमावर्ती राज्यों के गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों में योजना के तहत सड़क, पेयजल, विद्युत, संचार और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच आसान हुई है। वहीं मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय लोग विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के झाला गांव के ग्राम प्रधान अभिषेक रौतेला का कहना है कि वाइब्रेंट विलेज योजना के प्रभाव से सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
1: वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में जो बुनियादी विकास है उसको गति देना है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सीमावर्ती गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली और पर्यटन से संबंधित जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकने में मदद मिल रही है और लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में जो है ये वाइब्रेंट विलेज योजना है ये और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों में शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को की सभी प्रकार की अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। साथ ही विभिन्न संस्थानों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की भी चरणबद्ध वापसी सुनिश्चित की जाएगी। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉ रावत ने कहा कि दोनों विभागों में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थलों के बजाय अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इससे महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉ रावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधनों का संतुलित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके और संस्थानों की कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी बन सके। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में एसीसी विंग का 127वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैडेट्स ने अपने सैन्य जीवन के एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। समारोह में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने कैडेट्स को स्नातक उपाधियां प्रदान की। इस दौरान कुल 73 कैडेट्स को डिग्री प्रदान की गई। इनमें विज्ञान संकाय के 32 और मानविकी संकाय के 41 कैडेट शामिल थे। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल विंग कैडेट कैप्टन नवीन को प्रदान किया गया। सिल्वर मेडल कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा और ब्रॉन्ज मेडल विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर हर्षराज को दिया गया। जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों टीमों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बागेश्वर की औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय के औषधि भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं के भंडारण, संरक्षण और वितरण व्यवस्था की विस्तृत जांच की गई। औषधियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए निर्धारित तापमान और आर्द्रता नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। इसके अलावा उपलब्ध स्टॉक, बैच विवरण, निर्माण एवं समाप्ति तिथि, स्टॉक रजिस्टर तथा वितरण अभिलेखों की भी जांच की गई। उन्होंने बताया कि औषधि भंडार प्रभारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: नियमित रूप से जनपद बागेश्वर के औषधि वितरण इकाइयों में निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा जिला अस्पताल स्थित केंद्रीय औषधि भंडार का औचक निरीक्षण किया गया। स्टॉक रजिस्टर, ई औषधि पोर्टल एवं औषधियों के वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों का हमने सत्यापन किया। इसके साथ साथ जो है हमने 10 औषधियों के सैंपल्स भी लिए हैं, जिन्हें हमारे द्वारा औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया है।
0: और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण गैस के दामों में वृद्धि पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए की बढ़ोतरी। एक अन्य शीर्षक में समाचार पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान में फिर जंग की ज्वाला भड़की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कवि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त होगी। मूल तैनाती पर लौटेंगे शिक्षक, कर्मचारी और

0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत।

राजा धाम दियो धाम धाम का नेत्र छुड़ो चा बह करणी रोण्यो चा खूब चलो ढूंगो सो धना

कि राजा धाम जोज निराली सुनी गर्भवती वे गायो राजा जानो कई वे सैला शिकारा कि सात सौत क्या काम करिंदनु राजा धाम देव को बोलो जो ये मोरा।

जनी राणी देखी राजा धाम दो घर बड़ो हो गया है। राणी देखी राजा धाम दो ने फिर वापिस भावर जंगल पर चल गया है। लगी राणी तय कोखी की बिदना सात सौ तो न यहाँ को

अभी आप सुन रहे थे रोशन लाल की आवाज़ में ये गढ़वाली पांडव जागर। आइए आपको सुनवाते हैं सृष्टि काला का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र सिंह का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: सुरेंद्र सिंह के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह की 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी भी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व

0: हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1

0: हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state.

हूँ, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी कि जैसा हम अन्न यानी खाद्य पदार्थ खाते हैं वैसे हमारा मन भी होता चला जाता है और मन के बाद श्रोताओं तन भी प्रभावित होता है। वैसे अगर अपने खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और इस दिन को दुनिया भर में विश्व देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्रोताओं, इस बार की थीम है बोध से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। श्रोताओं, सुरक्षित भोजन हमारी थाली में हो, हम इसे शुद्धता से ग्रहण करें, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए खाद्य पदार्थों को रासायनिक पदार्थों से दूर मुक्त जैविक पदार्थों को अपनाना होगा, डिब्बा बंद और जंक फूड को ना कहना होगा, साथ ही खाना खाने की शुद्धता की बातों को हमें अपनाना होगा ताकि हम बहुत हद तक बीमारियों से दूर रख सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें और यही इस दिवस को मनाने की सार्थकता होगी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफ एम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब देश दुनिया के समाचार जानते हैं अखबारों की सुर्खियों में। आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हुए 73 कैडेट, जुनून जिद और जज्बे ने दिखाई अफसर बनने की राह। दून विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास की साझेदारी से शोध को मिलेगी नई दिशा। राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्नत तकनीकों पर दिया जोर। एसआईआर कल से प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। 7 जुलाई तक चलेगा प्रपत्र भरकर जमा करने का कार्य। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा। ग्लेशियर व दुर्लभ वन्य जीवों की निगरानी के साथ अध्ययन भी करेंगे विज्ञानी। राज्य की भाषिनी वॉइस ऐप में देश की 22 भाषाओं समेत उत्तराखंड की गढ़वाली कुमाऊनी बोलियां भी की गई हैं शामिल। जिला अस्पताल में हड्डी के 78 प्रकार के ऑपरेशन होंगे निःशुल्क। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू और मौसम संबंधी जानकारी। श्रोता उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से शुष्क हो गया है और पिछले दिनों हुई बारिश से राहत मिलने के बाद फिर से प्रदेश में गर्मी ने दोबारा तेवर दिखाने शुरू किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। ये थी मौसम संबंधी जानकारी और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने की आज 7 जून क्यों है खास। सन 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1654 में लुई फ्रांस का राजा बना। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 1929 में वेटिकन सिटी संप्रभु देश बना। 1974 में आज ही के दिन भारतीय टेनिस सुपरस्टार महेश भूपति का जन्म हुआ था चेन्नई में। वर्ष 1975 में पहले विश्व कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। श्रोतम ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में सुनवाते हैं यह गीत।

कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कुछ व्यक्तित्व बहुआयामी होते हैं जो अपने कार्यों से इतिहास में जाने जाते हैं। ऐसी शख्सियत है ख्वाजा अहमद अब्बास, जो सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, चिंतक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। इनका जन्म आज ही के दिन 7 जून 1914 को पानीपत में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनके परनाना मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू साहित्य के महान कवि और आलोचक थे। इनके दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके पिता गुलाम उसुद्दीन थे और माँ का नाम मसरूर खातून। अब्बास ने प्रारंभिक शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल से प्राप्त की

वर्ष की उम्र में मैट्रिक करने के बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की भाषा के अच्छे जानकार थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की, जब इन्होंने नेशनल कॉल और दी बॉम्बे क्रॉनिकल जैसी समाचार पत्र से जुड़ी और वहाँ पर इन्होंने संवाददाता और फिल्म समीक्षक के कार्य किए। इनका प्रसिद्ध कॉलम था लास्ट पेज, जो पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। कई दशकों तक ये पत्रकारिता से जुड़े रहे। साथ ही इन्होंने अपने जीवन में 74 पुस्तकें, 90 कहानियाँ और 3000 से अधिक इन्होंने लेख लिखे हैं। वहीं उपन्यास में इनका साहित्य इनकलाब बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। श्रोतम, इसके बाद ये फिल्मी दुनिया में सुधारक और यथार्थवादी रूप के रूप में उभरे और 1946 में इन्होंने बंगाल के अकाल पर आधारित फिल्म बनाई थी धरती के लाल, जिसे भारतीय सिनेमा की पहली सामाजिक यथार्थवादी फिल्म माना जाता है। और इसके बाद इन्होंने नीचा नागर फिल्म के लिए पटकथा लिखी, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में बामडी पुरस्कार से प्राप्त सराहना मिली। और उसको प्राप्त करने के बाद श्रोता, इन्होंने कई ऐसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखी जिनमें शामिल है आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बोबी आदि। श्रोताओं, इन्हें खूब प्रशंसा मिली और साथ ही इन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी के माध्यम से मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को पहली बार प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से अनेक फिल्मों के लिए पटकथा इन्होंने लिखी और फिल्म शहर और दो बूंद पानी के लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पर 1 जून 1987 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर इनकी फिल्में और इनकी पत्रकारिता से जुड़े आलेख आज भी हमें इनकी याद दिलाते हैं। सुनते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता आज 7 जून है। आज भारतीय फिल्मी मॉडल अभिनेत्री और डायरेक्टर अमृता राव का जन्मदिन है। इनका जन्म आज के दिन 1981 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक किया और साथ ही इन्होंने मॉडलिंग की। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कोंकणी भाषा की जानकार है। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। अमृता ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और मॉडलिंग की दुनिया में आगमन इनका तब हुआ जब ये मात्र छोटी उम्र में थी और ये 60 मॉडलों में से चुनी गई। उस समय ये छात्रा थी और इसके बाद श्रोताओं 18 महीने से भी कम समय में इन्होंने 35 से अधिक विज्ञापनों में काम किया। इस तरह से व्यस्त रहने के साथ साथ इन्होंने अपने अध्ययन कार्य को भी पूरा किया। कुछ विज्ञापन फिल्मों में इनका करियर बेहद ही शानदार रहा और उसके बाद इनके पास फिल्मों की लाइन लगती चली गई। वर्ष 2002 में इनकी करियर की पहली फिल्म आई थी और वो थी अब के बरस, जिनमें इनके अभिनय को खूब सराहना मिली। और इसके बाद श्रोताओं इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। और श्रोताओं वर्ष 2006 में सूरत बड़जात्या निर्देशित फिल्म विवाह में इनके करियर को एक तब ऊंचाई मिली जब इनके अभिनय को खूब सराहना मिली और दुनिया भर में ये लोकप्रिय हो गई। श्रोताओं अभिनय के लिए उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 2004 में फिल्मफेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, इस तरह से बहुत सारे आपने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्हें खूब सारी बधाइयां देते हुए सुनते हैं इनकी फिल्म से। कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म विवाह से।

श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखें कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसका पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे।

जी हाँ, आपने ये भी जानने का प्रयास किया होगा, किसी ने तो इसका आविष्कार किया ही होगा जो आज हम रेडियो पर आवाज़ सुनते हैं। श्रोताओं, आज विज्ञान जगत में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब सामान्य बात है, लेकिन उस समय को याद करें जब कुछ समय नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए रेडियो का आविष्कार किया गया। जी हाँ, वर्ष 1920 में मार्कोनी ने सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। उसके बाद दुनिया में रेडियो प्रसारण आरंभ होने लगे। हमारे देश में भी रेडियो प्रसारण के प्रयास किए गए और वर्ष 1930 में भारत सरकार द्वारा प्रसारण को अधिकार में लेकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आरंभ की गई और 8 जून 1936 को लॉर्ड लिन लिथगो ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया और यहीं से आधिकारिक रूप से रेडियो के प्रसारण की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से सफ़र हुआ था रेडियो का और ये सफ़र आज भी जारी है और अनंत काल तक जारी रहेगा। जी हाँ, इस वर्ष हम रेडियो के 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आप भी हमें लिख भेजें ना अपने विचार कि आकाशवाणी का ये अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा और आकाशवाणी ने आपके साथ जो अनुभव साझा किए, आपने उनका कितना लाभ उठाया और आगे आप क्या चाहेंगे। श्रोताओं, लिख भेजिए अपने विचार आकाशवाणी का सफ़र आपके साथ। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है। जी हाँ, हम आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 7088000731 है। आपके विचार हम तक प्राप्त होते हैं, तब तक हम लेते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के मैसेज हमें मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अपने श्रोताओं से फिर से बताना चाहेंगे आज की थीम आकाशवाणी का सफर आपके साथ। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर हमें लिख भेजिए अपने विचार और आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि श्रोताओं सुबह 9:10 से यानी कि थोड़ी देर बाद हम एक विशेष प्रोग्राम में होंगे आपके साथ प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। लेकिन उससे पहले लेते हैं आपके विचार। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू इस्माइल और साथ पीन का पूरा खुश दिल परिवार। लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम की थीम अच्छी है और 90 वर्ष के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि रेडियो का आविष्कार किया गया था मार्कोनी जी ने किया था। रेडियो से हमें नई नई जानकारी मिलती है, खबरें सुनने को मिलती है, घर परिवार के प्रोग्राम और सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं। श्रोताओं की फरमाइश भी अच्छी लगती है और लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है और इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और साथ में पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्मियों के दिनों में वो अच्छा महसूस कर सकें। और हम फूलों के साथ आपका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है, आपने नाम लिखा है किरण और कविता नैनीताल से। लिखते हैं कि सुप्रभात, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही यादगार, बहुत ही सूचना परक रहा है। और लिखते हैं कि फ़ोन इन कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा लगता है, समाचार भी हमें अच्छे लगते हैं, जानकारी प्रद होते हैं, कार्यक्रम सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और लिखते हैं कि बचपन से लेकर ये सफ़र आज तक हमें बहुत हमारा अच्छा रहा है और बिल्कुल आप लिखते हैं कि आगे भी ये सफ़र यूं ही आगे जारी रहेगा और चलता रहेगा। बिल्कुल, हम भी आपके लिए ऐसी ही कामना करते हैं कि इसी तरह ये सफ़र अनंत काल तक जारी रहेगा और साथ में आप हमारे साथ रहेंगे। और मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, मुरली और साथ में इनके खूबचंद वर्मा। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी का सफ़र हमारे साथ बेहद ही ज्ञानवर्धक रहा है। रेडियो में हम अपने नाम के लिए ही नहीं सुनते बल्कि रेडियो हमें ज्ञान की वृद्धि करता है जिसके लिए हम सुनते हैं। रेडियो के द्वारा खेती, ज्ञान, पानी, स्वास्थ्य, बिजली की जानकारी बहुत ही विस्तार पूर्वक देते हैं और आज तो ये सब सरल हो गया है जब से मोबाइल ऐप पर रेडियो कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने सही लिखा है और मोबाइल ऐप पर आजकल हमारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। आप कहीं पर भी अपनी पसंद का केंद्र सुन सकते हैं, अपनी पसंद के कार्यक्रम सुन सकते हैं, रेडियो के कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। हमारे श्रोताओं के हमें मैसेज मिल रहे हैं लेकिन अपने श्रोताओं से कहेंगे कि कुछ देर के लिए विराम लेते हैं और सुबह 9:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ और ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामों से और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
3: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास हमारे गांव में और जंगल है पहाड़ है फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिल के मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है मतलब कचरा के इकट्ठा करना है कहीं नहीं फेंकना है और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्व समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
2: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
3: मेरा सहयोग दिए।
2: अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
3: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से। अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए लगन किए तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
2: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
3: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
2: अच्छा जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
3: सर बहुत सारा चुनौती है जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल टपका टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का। उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
3: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया। माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा

0: भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए।
1: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है। मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय। हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए। उनमें से हमको जिला प्रशासन के सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी आया कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
0: मतलब उसके लिए भी अपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग बनाते नहीं है
0: जी।
1: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर क्रेडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रेडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर कि आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती है, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, क्या कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं स्नान से उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं स्नान से उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घर में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
0: मतलब
1: हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूरा कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव को बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से उड़िया मतलब पंचायत जिना जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं, चाहे जिससे काम महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भरत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोता सुन रहे FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में, और श्रोताओं आज की थीम है आकाशवाणी का सफर आपके साथ। हमारे श्रोताओं की हमें लगातार मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज हमारे श्रोताओं की हमें मिले हैं। आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैजी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल के सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हमें मिला है। और लिखते हैं कि हमने अपनी बात दूसरों

तक पहुंचाने के लिए और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। शिक्षा, खेती, किसान, कमेंट्री और साथ में मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिन्होंने हमारा साथ निभाया है। पत्रोत्तर के माध्यम से हम आकाशवाणी से जुड़े हैं और साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से हमने कार्यक्रमों को सुना है और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निज़ामाबाद की श्रोता हैं मैं वहीद रुमानी जी और आपकी बहुत सारे मित्रगण, पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, हर बार की तरह आपका विस्तार से मैसेज होता है और लिखते हैं आप कि आज का विषय है आकाशवाणी का सफ़र आपके साथ, बेहतरीन विषय चुना गया है और आज हम 8 जून को मना रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो का दिवस, यानी कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। और पुराने दौर की बात करें तो उस समय बहुत ही सीमित क्षेत्र था। रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिससे हर तरह की जानकारी सही, स्पष्ट और सटीक और सच्चाई के साथ मिलती थी। दूर दूर पहाड़ी क्षेत्रों में, खेतों में, खलिहानों में, गांव में, ढाणियों में, छोटे मोटे कस्बों में एकमात्र रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिससे हम हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। आज भी रेडियो के महत्व कम नहीं है। आज भले ही डिजिटल युग हो गया हो, मोबाइल ऐप के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में रेडियो और आकाशवाणी के केंद्र के सभी कार्यक्रमों को स्पष्ट और स्वच्छ तरीके से कहीं पर भी बैठकर सुना जा सकता है। परंतु जो पुराने दौर था उसको हम आज भी याद करते हैं। आज भी हम आकाशवाणी से जोश और जुनून से जुड़े हुए, भले ही टेलीविजन का जमाना है पर रेडियो की महत्ता आज भी कम नहीं है, क्योंकि इसे हमें हर प्रकार की जानकारी मिलती है। मौसम संबंधी, कृषि संबंधी, सामान्य ज्ञान, चिकित्सा संबंधी, मनोरंजन के अलावा समसामयिक घटनाओं की जानकारी समाचारों के माध्यम से आज भी स्पष्ट तरीके से और सच्चाई के साथ मिलती है। रेडियो से ही लोगों में जागरूकता आई है और लाभान्वित भी हुए हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ किसी भी खबर को बताना, लोगों तक पहुँचाना एकमात्र रेडियो आकाशवाणी का है, जो सराहनीय प्रयास है और आज भी जारी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी भी काम को करते हुए रेडियो को सुना जा सकता है, जिससे काम बाधित नहीं होता और किसी भी काम में बाधा नहीं पहुंचती। साथ ही रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को एक दूसरे से जान पहचान होती है, उनमें दोस्ती कायम होती है, उनका दोस्ती का दायरा बढ़ता है। आकाशवाणी के केंद्रों के माध्यम से दूर दूर विश्व में बैठे हुए अजनबी श्रोताओं से जो जान पहचान होती है, एक परिवार के सदस्य की तरह एक दूसरे से मिलाने का काम करता है रेडियो, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस स्लोगन पर रेडियो आज भी खरा उतरा है। धर्मेंद्र छिपा जी, बहुत सुंदर आपके विचार और धन्यवाद आपके सुंदर से और विस्तार से मैसेज के लिए, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से हमारे आकाशवाणी के केंद्रों से जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रमों से लाभान्वित होते रहें।

समय 9:33 और 48 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। आज की प्रोग्राम की थीम है आकाशवाणी का सफर आपके साथ। लगातार हमारे श्रोताओं के मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन जो श्रोता मैसेज लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर हम दोहरा दें, 7088000731 है। और लिख भेजे श्रोताओं, जल्दी से अपने विचार, आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं ब्रिजेश कुमार सैनी सहारनपुर ITI से। लिखते हैं, हमारे जीवन में रेडियो का सफ़र बहुत ही महत्व रखता है। अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है और हमारे विचार बदलने का कार्य कर रही है। आपका प्रसारण बहुत ही सुंदर है और आपकी जानकारी इस कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश कुमार सैनी जी आपके सुंदर से विचार के लिए। और इसी तरह हमारा साथ बनाए रखें आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी का सफर बचपन से अनवरत जारी है। जब से होश संभाला घर में रेडियो बजता सुना, स्थानीय आकाशवाणी इंदौर केंद्र से लोकगीत समाचार खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनते थे। पिताजी रेडियो बजाते थे, हम रेडियो को हमेशा साथ रखते थे एक बच्चे की तरह। आसपास के श्रोताओं के नाम सुनकर हमारी भी इच्छा हुई कि अपना नाम रेडियो से सुने और 1995 में ये अभिलाषा पूरी हुई और तब से ये सफर आज तक जारी है। जी बिल्कुल भेरूलाल भाकतरिया जी, हम इसी तरह आपके साथ बने हैं और इसी तरह आगे भी ये साथ यूँ ही बना रहेगा और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और साथ बनाए रखें। धन्यवाद इस सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता और समस्त गुप्ता परिवार। लिखते हैं कि आज की थीम बहुत ही उम्दा है। रेडियो का जो आविष्कार मार्कोनी साहब ने किया अथक प्रयास से शायद 1920 में, और जिसे हम आकाशवाणी का सफर 90 वर्ष के सफर अटूट है। रेडियो हमें शिक्षा, मनोरंजन और आपातकाल में हमें सचेत रहने के लिए सूचना देता है। आकाशवाणी परिवार अपने अथक प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई और संग हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह अपना सफर जारी रखें और हमारे साथ बने रहें आकाशवाणी देहरादून के साथ। कार्यक्रम में अगला मैसेज लें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। येलांतु काठुगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानुराज, अमित खन्ना और अम्मी, आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पर शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। लिखते हैं कि रेडियो सुनने की आदत बाप दादा से थी और ये आदत आज तक चल रही है। और लिखते हैं कि रेडियो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। रेडियो से बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है, मनोरंजन होता है, साथ ही न्यूज़ मिलती है और सेहत के बारे में जानकारी हमें आकाशवाणी से प्राप्त होती है। और आकाशवाणी के लिए दिल से धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। और आपने निश्चित बहुत सही लिखा है, इसी तरह के कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, लेकिन हमारे श्रोता कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नाम तो लिख रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं लिखते हैं। लेकिन श्रोता, ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है विचार आपके गीत हमारे, और इसमें आपके विचारों की प्रतीक्षा में हैं। तो लिख भेजिए अपने विचार जल्दी से। आज के प्रोग्राम की थीम है आकाशवाणी का सफ़र आपके साथ। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना से नक्सा नाज, याफिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब और साथ में इनकी परिवारजन। आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पर हार्दिक बधाइयां, और लिखते हैं कि आकाशवाणी से हमें दूर दराज की खबरें प्राप्त होती हैं, खेती के लिए जानकारी डॉक्टर से मुफ्त में सलाह मिलती है, किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। गर्मी के इस मौसम में क्या चल रहा है, कैसे हमें ध्यान रखना है, इस मौसम में पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण सही से मिल सके, और जानवरों के लिए हमें हर प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है आकाशवाणी के माध्यम से। लिखते हैं कि जब रेडियो नहीं था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, साइकिल से चलकर खबर देने का काम किया करते थे। शिक्षा में तो हर मुश्किल में रेडियो का साथ मिलता ही है। धन्यवाद श्रोताओ, निश्चित ही आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी लिख भेजी है। और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अजीब खान, नीरम गुड़ी और शोएब खान। आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर गौरवशाली अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 90 वर्षों से सुरों की सरिता बहती रही, ज्ञान संस्कृति और समाचारों की ज्योति जगाती रही, आकाशवाणी का हर प्रसारण दिलों को जोड़ता रहा, यही विश्वास और अपनापन सदैव बढ़ाता रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां। आप सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90वें स्थापना दिवस पर समस्त श्रोताओं और कर्मियों को हार्दिक बधाई। आकाशवाणी ने अपने मधुर कार्यक्रमों, प्रेरणादायक विचारों और जनहित कारी संदेशों के माध्यम से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। हम कामना करते हैं कि आकाशवाणी इसी प्रकार प्रगति के नए आयाम स्थापित करती रहेगी और अपने अमूल्य सेवाओं से देशवासियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। शुभकामना सहित जी बिल्कुल धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपको ढेर शुभकामनाएं। इसी तरह आप हमारे आकाशवाणी के सफर में साथ बने रहें। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारी श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिखा है, बड़ा विस्तार से लिखा है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में मैसेज है हमारे श्रोता लिखते हैं देहरादून चक्रातारूढ़ से आप हैं सुरील चावला साक्षी चावला दिनेश चोपड़ा तनु नानू राधिका रानी स्मिता रानी अंशुल गुप्ता साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि हर रविवार को सुनते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे ये हमारा मनपसंद कार्यक्रम है और आप जो आप हमें विचार देते हैं उस पर हम विचार भी प्रेषित करते हैं और दूसरों के विचार भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि रेडियो के माध्यम से हम हर समय जुड़े रहते हैं और लिखते हैं कि हर प्रकार के कार्यक्रमों को सुनते हैं और उनका लाभ भी उठाते हैं और हमें

वीडियो से हर प्रकार की जानकारी मिलती है और इसी तरह हमें आगे भी मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इसी तरह हमारे यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देहरादून चक्राता रोड से सुनील चावला जी, आपके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आपने ये मैसेज हमें लिखा है, शांति निवास लहेगा रेलवे से अमरावती महाराष्ट्र से ही, कुमारी कल्पना कुरहाड़ी, वंदना आशीष और दीपक कुरहाड़ी। देखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आपको ढेर शुभकामनाएं। और लिखते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है, आकाशवाणी का सफर आपके साथ। और लिखते हैं, आज हम हर क्षेत्र की बात करें तो रेडियो ने हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाया है। एक ज़माना वो था, गांव में कस्बों में रेडियो को एंटीना के माध्यम से सुना करते थे, पर आज डिजिटल युग में हम मोबाइल ऐप के माध्यम से साफ सुथरा प्रसारण आसानी से सुन सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ हर क्षेत्र की जानकारी हमें रेडियो ही देता है और इसी प्रकार की रेडियो से जानकारी को लाखों करोड़ों लोग लाभ उठाते हैं। रेडियो सुनने से मन प्रसन्न रहता है। सच्ची और सटीक जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो वो रेडियो से इससे ही मिलती है। और इस काम में रेडियो ने समय समय पर बेहद ही हमें महत्वपूर्ण जानकारी देकर एक अच्छी भूमिका निभाई है और इस भूमिका को आगे भी निभाता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद इस सुंदर से विचार के लिए। और हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, इसी तरह जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी और आप आकाशवाणी देहरादून से इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी ऋतिक और साथ में है बलवीर सिंह। लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है और लिखते हैं कि अब इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और बाद में उनकी देखरेख भी करनी चाहिए। पानी हम गर्मी के मौसम में बर्बाद न करें, ज़रूरत के बराबर ही हम बाज़ार में कपड़े का थैला लेकर जाएं, घर से जब बाहर निकलें तो घर की सारी बिजली बंद करके जाएं, पानी का पानी ढक कर रखें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें, साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। इसी प्रकार की जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिलती रहती है। धन्यवाद मुकेश कश्यप जी, निश्चित ही इसी तरह की जानकारी आप हम रेडियो के माध्यम से लेते रहें और जानकारी का लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में श्रोतम बढ़ते हैं और लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, समय के साथ साथ रेडियो में भी परिवर्तन हुए, हर प्रकार के परिवर्तन हुए, चाहे वो कार्यक्रमों को लेकर या फिर दूसरे की बात करें। जी हाँ श्रोताओं, आज रेडियो में भी डिजिटल हुआ है। सोशल मीडिया से हम हर पल आपसे अपडेट रहते हैं। फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आपसे सजीव जुड़ते हैं, साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से आज दुनिया के कोने कोने तक हमारे रेडियो के प्रसारण पहुंच रहे हैं। पर श्रोताओं, रेडियो का ये सफर आपके बिना संभव नहीं है। जी हाँ, आप जैसे सुधी श्रोताओं से इस सफर को आसान और सुगमता बना है और सुगमता पूर्वक आप तक कार्यक्रम पहुँच रहे हैं। श्रोताओं, ये सफर अगर आप न होते तो कितना मुश्किल हो जाता, सोचना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ श्रोताओं, इस सफर में आपका साथ हमारे साथ सदैव बना रहेगा और तो ये सफर आसान, सुविधाजनक और सुगम बन जाएगा जब हम लंबे सफर की बात करते हैं हमारे रेडियो प्रसारण की। जी हाँ श्रोताओं, ये रेडियो का प्रसारण यूं ही अनंत काल तक चलता रहेगा और इसी तरह जारी रहेगा, ऐसा हम आपसे पूरा वादा करते हैं। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति।

0: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। देहरादून में आज उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे उत्तराखंड के बूथ लेवल ऑफिसर्स को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए ₹350 का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के सभी 11,733 BLO को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ललित फाउंडेशन के अधिवेशन का शुभारंभ। धामी बोले, कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता ही नहीं बल्कि चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की अटैचमेंट प्रतिनियुक्तियों को समाप्त किया जाएगा। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सभी शिक्षक कर्मचारी अपनी मूल तैनाती पर लौटेंगे। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आर्मी कैडेट कॉलेज ACC विंग का 127वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 73 कैडेट को उपाधियां प्रदान की गईं। आगामी गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए

0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीत लिया है। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। अभी आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello, dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today's topic is all about technology for the social good. भविष्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका और समाज पर इसका प्रभाव। कुछ ही दशकों में तकनीकी नवाचार ने मानव अस्तित्व के हर पहलू को बदल दिया है। पहिया के विकास से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे हालिया प्रगति तक आधुनिक दुनिया के विकास में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सरल, अधिक उत्पादक और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ हो गया है। प्रौद्योगिकी के कई अच्छे सुधार लाए हैं, जिन्होंने हमारे जुड़ने के तरीके और पर्यावरण को बदल दिया है। सेलफोन से लेकर वर्चुअल रियलिटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हालांकि समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव हमेशा लाभकारी नहीं रहे हैं। इसके कई अनुकूल प्रभावों के बावजूद अवांछनीय दुष्प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं, जिन्हें नियंत्रण किया जाना चाहिए। समाज पर टेक्नोलॉजी के कुछ नकारात्मक प्रभाव में तकनीकी निर्भरता, साइबर बुलिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन शामिल है। स्वचालन और AI के बढ़ते उपयोग ने नौकरियों के नुकसान और बढ़ती आय के अंतर के बारे में चिंताएं पैदा की है। नए तकनीकों के निरंतर उभरने के कारण प्रौद्योगिकी का भविष्य और भी दिलचस्प प्रतीत होता है। हालांकि ये नवाचार स्वागत योग्य सुधार ला सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि हम उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले जोखिम को नजरअंदाज न करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। अगले वर्ष में हमारी दुनिया को परिभाषित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आधुनिक समाज पर प्रौद्योगिकी के उच्च और नकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। We all know about artificial intelligence, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आधुनिक तकनीक में सबसे आकर्षक विकास में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI है। आवाज पहचान, चित्र पहचान और NLP ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां AI ने बहुत प्रगति की। फिर भी AI के पास इससे कई ज्यादा आशाजनक अनुप्रयोग है। स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय और परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने की भी क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का अर्थ है आपस में जुड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की वैश्विक प्रणाली, जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा और निर्देशक को आदान प्रदान कर सकता है। उद्योग से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के सेंसर इस श्रेणी में आते हैं। घर को संचालित बनाते हैं, ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने और परिवहन में सुधार करने में IoT के साथ बहुत सफलता मिली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब सर्वव्याप्ती है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में ये प्रवृत्ति और भी तेज होगी। पिछले कई वर्ष में संवर्धित और आभासी वास्तविकता दोनों में रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आभासी वास्तविकता VR और संवर्धित वास्तविकता AR दोनों का लक्ष्य उपयोगकर्ता को भौतिक दुनिया पर आरोपित डिजिटल जानकारी के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। इन तकनीक का उपयोग मनोरंजन, शिक्षा और चिकित्सा उपचार आदि में किया जा सकता है। आभासी और संवर्धित वास्तविकता के अनुभवों के और भी अधिक यथार्थवादी और मनोरंजक होने की उम्मीद है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक अंतर्निहित तकनीक पर निर्भर करता है। फिर भी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग केवल क्रिप्टोकरेंसी के अलावा और भी कई कामों के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक विपरीत खाता है जो सुरक्षित डेटा भंडारण और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ऐसा कुछ उदाहरण

उदाहरण है जो बहुत लाभ उठा सकते हैं। 5G के मोबाइल नेटवर्क मौजूदी चौथी पीढ़ी 4G नेटवर्क की तुलना में काफी तेज और कम धीमी होगी। 5G नेटवर्क द्वारा स्वायत्त वाहन, स्मार्ट शहर और टेली सर्जरी सहित नए उपयोग संभव हो सकते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के मुद्दे ने 5G नेटवर्क की शुरुआत को धीमी कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग के केवल दो उदाहरण हैं, लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्वांटम कंप्यूटिंग को कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने से पहले पार करना होगा। उद्योग और चिकित्सा में ऐसे नवाचार कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करते हैं, उन्हें जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। चिकित्सा, खेती और यहाँ तक कि बिजली उत्पादन में भी ऐसे कई क्षेत्र में से कुछ है जो जैव प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो सकते हैं। जब नई बीमारी के उपचार और इलाज खोजे जाते हैं तो आने वाले वर्ष में जैव प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रोबोटिक्स अनुसंधान का मुख्य ध्यान संचालित उपकरणों पर है जो कुछ निश्चित कार्य कर सकते हैं। निर्माण, चिकित्सा और परिवहन सहित और कई उद्योगों को रोबोटिक्स के उपयोग से लाभ हो सकता है। मानव जैसे संज्ञानात्मक क्षमताएं वाले मशीन बनाने में रोबोटिक्स के भविष्य की आशा है। क्लाउड में कंप्यूटिंग में डेटा के रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित करना और उसे स्टोर करना शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा डेटा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक प्रोग्राम और सेवाएं बनाई जा रही है, इसकी प्रमुखता केवल बढ़ाने का अनुमान है। उदाहरण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, वॉइस असिस्टेंट और पिक्चर आइडेंटिफिकेशन सेवाएं जैसे AI प्रोग्राम चला सकती है। जैसे जैसे तकनीकी का प्रचलन बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर और नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घुसपैठ से सुरक्षित रखने का अभ्यास है। साइबर खतरे को प्रचलन बताते हैं कि डेटा की सुरक्षा का महत्व और बढ़ेगा। संचार की उन्नति आधुनिक सभ्यता के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे उल्लेखनीय लाभों में से एक है। तकनीकी प्रगति के कारण अब हम तुरंत और अधिक आसानी से संदेश भेजे और प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी की व्यापक उपलब्धता के कारण दुनिया भर के लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसकी वजह से लोग अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं और मूल्यों वाले समुदाय बना सकते हैं। इंटरनेट के आगमन के साथ पहले से दुर्गम ज्ञान अब हर किसी की पहुंच में है। इंटरनेट ने किसी के लिए भी कुछ ही माउस क्लिक के साथ नए विचार, प्रथाओं और दृष्टिकोणों से परिचित होना संभव बना दिया है। इसीलिए लोग अपने समय पर ज्ञान प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में बेहतर सक्षम है। साथ ही इसे स्वास्थ्य, विज्ञान और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार में सहायता मिलती है, जिससे अधिक सुविज्ञान नागरिक बन पाए हैं। इन तकनीकों को व्यापक उपयोग के कई सकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि तकनीकी पर निर्भरता, साइबर बुलिंग और निजता का उल्लंघन, जिन्हें संबोधित किया जाना है। बेहतर संचार, सूचना तक आसान पहुंच, अधिक उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि तकनीक ने सभ्यता को कैसे लाभ पहुंचाया है। फिर भी प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर को कम करने और आर्थिक असमानता को बढ़ाने की क्षमता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम एक समाज के रूप में इन खतरों के बारे में जागरूक रहे और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का आनंद लेते हुए उन्हें कम करने के लिए कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: ये सर्थे अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म का नाम था यस बूस। गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
7: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
8: आइए सुनते हैं नदीम शर्मन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म का नाम दामिनी।

0: Akashwani at 90.
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: श्रोतों, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।
4: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: हम आपको याद दिला दें, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बालमंडल कार्यक्रम होगा 12:30 पर, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों की मुख से रचनाएं, बाल गीत और मनीषा अग्रवाल की बाल कहानी यादगार दुनिया। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम 5:10 पर होगा। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा 5:45 पर। कृषि जगत का प्रसारण किया जाएगा 7:00। श्रोतों, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने परिषद के सदस्यों के साथ वैश्विक उथल पुथल के दौर में जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के विभिन्न सुधारों पर विचार विमर्श किया। बैठक में सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन प्रस्तुत किया। इस दौरान भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित

0: मुद्दों पर सलाह देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता नहीं होते, बल्कि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। उनकी रचनाएं समाज को दिशा देने, जन चेतना जागृत करने तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमि रही है। उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गिरीश तिवारी गिरदा, शैलेश मटियानी, गौरा पंथ शिवानी और मोहन उप्रेती जैसी साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है। मुख्यमंत्री ने आयोजन में उपस्थित डॉ. कुमार विश्वास, पद्मश्री अशोक चक्रधर और डॉ. हरिओम पवार सहित विभिन्न साहित्यकारों और कवियों को सम्मानित भी किया। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्य में जुटे उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर्स को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए आयोग द्वारा ₹350 का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के मोबाइल रिचार्ज भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान बीएलओ 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटेंगे। इस एक माह में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से प्राप्त भरे हुए गणना फॉर्म्स को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ को मोबाइल डाटा प्लान की कमी ना आए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएलओ को एक माह का मोबाइल रिचार्ज धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। आगामी गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। देहरादून के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और संस्तुतियां ऑनलाइन आमंत्रित की हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं गृह मंत्रालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नामांकन के साथ संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण, व्यक्तित्व व कृतित्व, उपलब्धियां, सेवाएं तथा अन्य आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद विभाग की ईमेल पर केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में भेजा जाना है। शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर आवेदन व संस्तुतियां 10 जून तक स्वीकार की जाएंगी। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सभी अटैचमेंट शीघ्र समाप्त किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न संस्थानों व विभागों में प्रतिनियुक्तियों पर गए कार्मिकों की भी वापसी कराई जाएगी। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दोनों विभागों में बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थलों के बजाय अन्य विभागों में प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत हैं। इससे महाविद्यालयों व पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि विद्यालय शिक्षा विभाग की तर्ज पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वार्षिक स्थानांतरण से पहले सभी प्रकार की संबद्धताओं को समाप्त करते हुए संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थलों पर भेजा जाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए ब्रज के लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
3: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
2: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
3: व्हाट्सएप 7895372936।
2: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद पुराना शिव मंदिर मुखानी चौराहा हल्द्वानी, शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 11 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम।

सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा की ओर से। रोज की तरह ठीक 11 बजे हम फिर हाजिर हैं श्रोताओं आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश लेकर। उम्मीद है आप सब अपने घरों में संडे एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बिना देर करे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। उसके बाद आप सभी की फरमाइशों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है मोहम्मद रफ़ी के स्वर में झुक गया आसमां फिल्म के गीत के साथ। अब चलिए आप सभी के मैसेजेस को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये पहला मैसेज हम तक आकर पहुंचा है कस्बा उगेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और इनके साथ है निर्भय गुप्ता। अगली फरमाइश हम तक आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की। अगले पसंद करता है जिला मुरादाबाद गांव बिजना से रिजवान खान, आरिज रजा खान, फैजानाज असजाद राजा खान। और ये जो फरमाइश है पूनम कुकरेती, सुनील कुकरेती, विवेक, वंदिता वंश, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हमें मैसेज कर रहे हैं। करनाताल जिला, रंगारेड़ी, तेलंगाना, कानूगुला, गोपाल, माहेश्वरी, प्रवीलिका, विष्णु।

वर्धन और विग्नेश इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भूला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। अगले पसंद करता है गांव चोहलदा बागपत से, आप हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है शिवपुरन कॉलोनी से हैं कमला देवी माहोबिया, अनय अनाया ईशु बाबा, शीतला चौक खंडवा के ये हमारे श्रोता हैं, आप हैं विशाल सिंह और विवेक सिंह। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है खाला पार मुजफ्फरनगर से, साहिना प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली का। ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद मुकराम, मोहम्मद नोमेन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जकीर और मोहम्मद फजील। अगले पसंद करता है विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामा पुरी, पली पुरी, सुनील पाठक, वीके पुरी और विनोद पुरी हमें मैसेज भेज रहे हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है दिल्ली गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा से, आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगले पसंद करता है भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से हैं गोपाल नाई और उमा महेश्वरी। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। अगले पसंद करता है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमरगढ़ मध्य प्रदेश से, आप हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। ये पसंद हम तक आ पहुंची है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बांगरी, प्रभुलाल बांगरी। ये हमें मैसेज कर रहे हैं राजस्थान जिला झालावाड़ से। अब आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म से।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

जी हाँ, अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है। ये मैसेज हम तक पहुंचा है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुमना अंसारी और इनके साथ हैं आलिया अंसारी। अगले फरमाइश करता हैं लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद हमें मैसेज भेज रहे हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से। अगले पसंद करता है ये मैसेज हम तक पहुंचाया है अधिकारी निवास मिलन विहार जीएमएस रोड देहरादून से। आप हैं राजेश्वरी सागर, इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी निमित। ये मैसेज हम तक पहुंचा है झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। अगले पसंद करता है कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा निवाडा जिला गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं। आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। ये मैसेज पहुँचाने वाले

हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार के हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। साथ में गोला बाजार बक्सर से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर के ही ये श्रोता हैं राज एसजी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। अगले फरमाइश करता है, ये हमें मैसेज कर रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष और शौर्य, दिनेश। अगले पसंद करता हैं कस्बा चिलकाना से हैं मोहम्मद शरीफ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और मुन्ना नज्म अंसारी। ये मैसेज हम तक पहुंचा है गुन्नौर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। अगले पसंद करता हैं बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी ने। राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र के ये हमारे श्रोता हैं आप हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और समस्त रामेकर परिवार इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से ये मैसेज हम तक पहुंचा है एम असलम सैफी, जुबिनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का। अगले पसंद करता है गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ये मैसेज हम तक आया है क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी का। अगले पसंद करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा, इनके साथ हैं सोनम वर्मा। ये मैसेज हम तक पहुँचाया है तेलंगाना चौटुपल से कस्तूरी रामोडू, वोमा देवी, प्रधुवी और नारायण ने। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है कलानूर हरियाणा से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। अगले पसंद करता है ये हमें मैसेज कर रहे हैं गांव जाखोर राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। अगले पसंद करता है नई बस्ती गंज डुडवारा के ये हमारे श्रोता हैं आप हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। अगले पसंद करता है खेल बाजार पानीपत के हमारे श्रोता हैं आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या सुरलकर। अब आइए श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में लोफर फिल्म से।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का, और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं, आपकी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा। अब आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आप सभी के मैसेजेस को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुँचाया है बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं। आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर और इनके साथ हैं साधना पवन पाटिल। अगले पसंद करता है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। ये मैसेज हम तक पहुंचा है बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप हैं विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूढ़त। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। अगले फरमाइश करता है गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आज़ाद। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पीएस नवाकर और इनके साथ हैं तुषार करागले। अगले पसंद करता है तेलंगाना निजामाबाद से, ये हमें अपनी मैसेज फरमाइश भेज रहे हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना और इनके साथ हैं दानिश आसिफ शेख। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनब अब्बासी और यसफ अब्बासी हमें मैसेज कर रहे हैं। सिकंदरा राव के ये हमारे श्रोता हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सताना MP से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। अगले गीत के लिए पसंद करता है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से ये मैसेज हम तक पहुंचाया है जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनी मुजावर ने। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं। संगीता वैष्णवी, मीनाक्षी, नंदू, काकी, रिया, मुनेश, दिनेश और मनोज, बीरेन सौरभ, इनके साथ हैं और इन्होंने जो है अपने जगह का नाम नहीं बताया है कि ये कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, तो कृपया करके आप ये भी मैसेज में शामिल करें कि आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। और ये जो मैसेज हम तक भेजा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं, आप हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी और एलएम। अगले पसंद करता हैं पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और इनके साथ हैं सुलोचना भगत। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण वर्मा, प्रवीण वर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। जसपुर उत्तराखंड के हमारे श्रोता हैं, इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और इनके साथ हैं माहिरा नूर। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया का मैसेज हम तक आ पहुंचा है। गांव हरिडीह चांडिल झारखंड से ये

मैसेज हमें भेजने वाले श्रोता हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले पसंदकर्ता हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं अजीज़ भाई, मतीम भाई, शेख चांद, फारूक फूलवाले, सईद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, मौसा करीम और शेख सलीम। अगले पसंदकर्ता हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान के, ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की ओर से ये मैसेज हम तक पहुंच चुका है। अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से ये मैसेज आया है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवारा से हैं दिनेश चौहान और डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, चोपड़ा दिनेश, तन्नू नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा सीमा द्वार से हमें मैसेज भेज रहे हैं सभी चावला फैमिली। गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है शांति कॉलोनी जगाधरी से हैं सूरज मंडल और अनिल शर्मा। अगले पसंदकर्ता हैं तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। जिला वर्गल से हैं मोहम्मद खाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खाजा फजीउद्दीन, आयेश, तबस्सुम और जुबेरिया। अब आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, आप सभी की लगातार फरमाइशें हम तक पहुंच रही है और ये देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। इसी तरह आप कार्यक्रम के प्रति प्यार यूं ही बनाए रखिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आप सभी के मैसेजेस को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचा है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। ये मैसेज हम तक आ पहुँचा है। आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और इनके साथ हैं बेबी गर्वी। सहारनपुर के ये हमारे श्रोता हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। अगले पसंदकर्ता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईर्शान चिंपा और पूजा परिहार। अगले पसंदकर्ता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद। ये हमें मैसेज कर रहे हैं पांकुड़ झारखंड से। इनके साथ हैं बोहड़ा खांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। अगले पसंदकर्ता हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। आप हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और इनके साथ हैं तरुण यादव। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और इनके साथ हैं यशस्वी वर्मा।

पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और इनके साथ हैं मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी आयुब शेरी। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास ने। अगले पसंद करता है फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से ये मैसेज हम तक पहुंचा है मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से हैं शिवानी कुमारी साहू, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री, रिया, जिया, टूसू, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू। और शिव मंदिर चौक दमदम अर्जुनपुर से हैं बसंत लाल साव, मुनि देवी शाह, जयप्रकाश साव, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी और इनके साथ हैं बी के सिन्हा। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल। अगले गीत के लिए जो अनुरोध करता है ये हैं जलालाबाद शामली से हैं, यूपी से हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जिशान मंसूरी। अगले अनुरोध करता है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री। अगला मैसेज हम तक पहुंच चुका है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघविंदर, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्र शरगुह, सुनील पाठक इस समय हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं गाँव लोहेड़ी जिला महोवा बुंदेलखंड यूपी से। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा। अगले पसंद करता है नेहरू चौक पैठड़ से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। ये मैसेज हम तक पहुंच चुका है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। ये मैसेज हम तक आया है पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार, बिमल, नवरतन हाता, बाड़ी हाथ, पूर्णिया बिहार के हमारे श्रोता हैं। आप हैं ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाड़ो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी। अगले पसंद करता है मसूरी रेडियो लिसनर क्लब से हैं बाजार रेडियो मुंगासपुर जिला कानपुर देहांत से मोहम्मद जाकी मंसूरी, कालपी वाले, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ये मैसेज हम तक पहुँचाया है कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक कुमार और निर्भय गुप्ता ने। अगले पसंद करता है वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। अगले पसंद करता है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा व्रजसेन। अब आइए श्रोताओं आप सभी की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये अगला गीत।

श्रोताओं, अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है धामण गांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा ठेठे पाटिल, भागवत ठेठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी ठेठे पाटिल और कुमारी सानिका ठेठे पाटिल ने। अगले पसंद करता है श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े और साइशा सोनवड़े। अगले पसंद करता है समर्थ दादा पेठे पाटिल। ये मैसेज हम तक पहुंच चुका है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। कुम्भार गली श्रीरामपुर से ये मैसेज हम तक आया है। आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और सानिका दले का। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। अगले पसंद करता है मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, गांव जखर, गांव अहमदनगर से इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहान सिद्दीकी, विष्णु अग्रवाल इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कांठ से। ये फरमाइश हम तक आ पहुंची है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। ये मैसेज हम तक पहुंच चुका है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब का। अगले पसंद करता है पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू, इनके साथ हैं दीपिका साहू जो कि छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब के हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। ये मैसेज आ चुका है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, पिहरा बजा झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया चूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह, वसंत लाल शाह, हीरा मोती पन्ना लाल शाह। ये मैसेज आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीजा प्रवीण और जोहानुल हुदा का। अगले पसंद करता है जो हमें मैसेज कर रहे हैं ये है दतरंगी के श्रोता भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावर्ती, विनीता वर्मा और रुद्रा वर्मा। अगले हमारे श्रोता हैं पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर प्रजापति। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का। ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाहुल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सुहन जोशी और पायल जोशी। अगला मैसेज आ पहुंचा है ये हमें पहुंचाने वाले ये हमारे श्रोता हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार इस समय ये कार्यक्रम सुन रहा है। अब आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सरायो बदायूं से है आफरीन खान और जमीर खान। राजधानी रायपुर से है नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा को इजाजत दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम

0: सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The External Affairs Minister made these opening remarks after co-chairing India-Indonesia Joint Commission meeting in New Delhi. He said that both nations celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
2: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years we made good progress in our bilateral relations. Today I look forward to extensive discussions with you covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
1: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, PMUY, pays 642 rupees for a 14.2 kilogram LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of 300 rupees on the first 4 refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at 942 rupees. Today is the last date to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, yesterday conducted searches at 6 premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in 8 departments of Haryana government and 2 departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest

0: Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations were carried out at residential premises of senior public servants of Haryana cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion. Actor Vikrant Massey, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Mr. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. In cricket, India lost 3 wickets in the morning session to reach 475 for 6 at lunch on the second day of the one-off test against Afghanistan at Mullapur in New Chandigarh today. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे उत्तराखंड के बूथ लेवल ऑफिसर्स को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए आयोग द्वारा ₹350 का भुगतान किया जाएगा। देहरादून में आज उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ललित फाउंडेशन के अधिवेशन का शुभ आरंभ। धामी बोले, कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता ही नहीं बल्कि चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के सभी अटैचमेंट और प्रतिनियुक्तियों को समाप्त किया जाएगा। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आर्मी कैडेट कॉलेज ACC विंग का 127वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 73 कैडेट को उपाधियां प्रदान की गईं। आगामी गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं गृह मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर पलट गई। बस में 39 यात्री सवार थे जिसमें से 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। शेष सभी यात्री सुरक्षित हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीत लिया है। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:12 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीता पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ?
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते हैं, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवो हारु तिहवो,
1: हाडू तिहवो हारु तिहवो,
0: कडल करेय खग कुला,
1: कडल करेय खग कुला,
0: यनी तो मुगिला

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता।

0: मालूम हो गया ना, इसके लिए जो स्वर आते हैं वे भी सुन लीजिए।
1: बान लोकन भुवनाक माम माम गम गरी सरी
2: माम माम गम गरी सरी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

मेरा अंतर तो पूरी तरह से याद हो गया, तो अब तीसरा अंतर सीखेंगे। मुक्त गगन नूर पाला नीजो शक्ति रेखे गे। अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: अभी आप सामुदायिक गान शिक्षा पाठ सुन रहे थे। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल।
1: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ, वो भी।
2: बच्चों संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल में। आज आपके साथ हैं आपकी गीता दीदी। बच्चों, आजकल आपकी छुट्टियां चल रही होंगी, खूब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? और करना भी जरूरी है। जब आप पूरे साल भर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद छुट्टियों में मजा करना तो बहुत जरूरी है। आप इन छुट्टियों को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे? आप छुट्टियों में अपने हर शौक को पूरा कर सकते हैं, अपने उस हुनर को निखार सकते हैं जिसे करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में जब आप बिजी होते हैं तब आप ये नहीं कर पाते। बच्चों, आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल की कोचिंग ले सकते हैं, या फिर तैराकी सीख सकते हैं। इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन दिनों कर सकते हैं, और इनको करने में आपको मज़ा भी आएगा और आप कोई नया हुनर भी सीख सकते हैं। इन सब के अलावा आप एक आदत जरूर विकसित कीजिए। प्रतिदिन आप अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक है उसे पढ़िए। शुरुआत में तो चाहे 5-10 मिनट ही सही आप अपना टाइम दें, लेकिन अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ को पढ़ेंगे, चाहे वो कहानी हो, किसी व्यक्ति की जीवनी हो, विज्ञान, खेल या फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई भी कहानी हो, जो भी विषय आपको अच्छा लगता है उसे चुनकर उसे समय दे सकते हैं। बच्चों, जब ये आदत आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आगे चलकर आप एक अच्छा पाठक बनेंगे, और इसके साथ साथ आपकी ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आप अनावश्यक मोबाइल स्क्रोलिंग आदि की लत से भी बचे रहेंगे। बच्चों, ये तो हुई छुट्टियों की बातें, और आपको तो मालूम ही है, हम सब जैसे जानते हैं इतनी गर्मियां हो रही हैं, इसके कारण जो भी खाना बनाया जाता है, मम्मी जो भी आपके लिए बनाती है उसको कुछ ही घंटों के अंदर खा लेना ठीक रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, खाना ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं बाद में खा लूंगा, तो कुछ घंटों में छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया आदि क्या करते हैं, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, जिसे अगर आपने खा लिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों, आज यानी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों के प्रति जागरूक करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। बच्चों, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग दूषित खाना खाने से बीमार पड़ते हैं, और जिसमें छोटे बच्चों का अनुपात बहुत अधिक होता है। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य है कि खेत से थाली तक जो अनाज किसान हमारे लिए खेतों में उगाता है, उसको वहाँ से उगने से लेकर हमारी थाली तक पहुँचने पर सुरक्षित भोजन हर इंसान, हर व्यक्ति तक पहुँचे और खाद्य जनित बीमारियों यानी फूड बॉर्न डिजीजेस से रोका जा सके। सुरक्षित भोजन न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि कृषि, व्यापार और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देता है। तो ये तो थी बातें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। कार्यक्रम में समय हो चला है नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों को लेने का। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन बच्चे जुड़े हैं और वो क्या क्या सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं वर्तिका को।
1: अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम वर्तिका है।
1: और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
1: क्या सुनाने वाली है वर्तिका आज हमें?
2: एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: कविता का शीर्षक?
2: चींटी।
1: अच्छा, चींटी के बारे में बताएंगी?
2: जी दीदी।
1: तो चलो सुनाओ।
2: पैदल चलती जाती चींटी, शाम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी।
1: बहुत अच्छा कहा आपने वर्तिका, चींटी हमें बहुत सारी बातों की अच्छी सीख देती है, मेहनत करके हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। नाम बताइए।
3: मेरा नाम अपर्णा है।
1: आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
3: मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
1: आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
3: मैं सीखो कविता।
1: तो चलिए सुनाइए।
3: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम अंकुर है।
1: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
4: मैं 2 में पढ़ता हूँ।
1: आप कौन सी पोएम सुनाएंगे?
4: चीटा चीटा दूधला, चीटा दूधला, दूध ला कर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा, चीटा चीटा गन्ना ला कर शक्कर बना, चीटी भूखे आएगी जब पाव खा जाएगी, चीटा चीटा शक्कर ला शक्कर लाकर, चीटी शक्कर ला शक्कर लाकर शरबत बना, चीटी प्यासे आएगी जब पाव पी जाएगी, चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी, चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा झटपटा, चीटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी, तेरी गुड़ गाएगी, तेरी गुड़ गाएगी। धन्यवाद।
1: अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम युवराज है
1: और आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
5: आज
1: चलिए सुनाइए।
5: Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchief was sold. A hanky for an elephant. The sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achu said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. Thank you.
1: अब हमारे साथ है 2 प्यारी प्यारी बच्चियां। आइए जानते हैं उनका परिचय। अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम काजल है।
1: और आपका?
7: मेरा नाम पूजा है।
1: आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
6: मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
7: मैं भी कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
1: आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
8: स्वदेश वंदन।
1: चलिए सुनाइए।
8: वंदे सदा स्वदेशम एता दिशम स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवापि मध्य देशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशं वन्दे वन्दे ध्वजं त्रिवर्णं वन्दे स्वदेशं वन्दे स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं।
1: धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं प्राथमिक विद्यालय हर्रावाला के कुछ बच्चे। चलिए जानते हैं उनसे उनका परिचय। अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम युवराज है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ।
1: और आपका?
10: मेरा नाम अनुष्का है।
11: मेरा नाम सुहानी है।
12: मेरा नाम यशु है।
13: मेरा नाम पूजा है।
14: मेरा नाम ट्रिंकल है।
1: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
5: हम अनेक किंतु है।
1: तो चलिए शुरू कीजिए।
15: हम लोग हैं

0: अपना नाम बताइए।
1: अच्छा
0: अक्सा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
1: वन
0: क्या सुनाओगी हमें?
1: मछली,
0: मछली की कविता सुनाओगी? चलो सुनाओ।
1: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ डांगे तो डर जाएगी, बाहर निकालूंगी मर जाएगी, 2 दिन रखो सर जाएगी।
0: अरे वाह, 2 दिन रखना ही क्यों है, पानी में छोड़ दो, तैरती रहेगी। क्यों?

0: आपका नाम क्या है?
1: माय नेम इज मिहिका।
2: आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: आई स्टडी इन क्लास 3।
2: आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
1: सी सॉन्ग।
2: चलिए शुरू कीजिए।
1: आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, लाइंग ऑन द सैंड। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माय हैंड। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माय ईयर। And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you had found a nice big shell and hear it singing too.
2: Very good. बहुत अच्छा मीका। आप लोग भी अपने घर में, अगर आपके घर में शंख है तो आप जरूर उसको देखिएगा। जब भी हम उसको कान से लगाते हैं ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरों की आवाजें आ रही होंगी। बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। आपका नाम क्या है? आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: और
2: आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
1: मन के भोले भाले बादल।
2: चलिए शुरू कीजिए।
1: जब्बर जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालो, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले। कुछ जोकों से तोत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड, कुछ ऊँटों से कुप्पर वाले, कुछ परियों से पंख। आपस में टकराते रहा रहा शेरों से मतवाले बद। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रहा रहा करते हैं शैतानी। कुछ अपने थैले से चुपके झर झर कर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रहा रहा कर छत पर आ जाते, फिर चुप कर ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनते, बहुत बार नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत बाले। मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद।
0: तो ये थी नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियाँ। अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ देना चाहते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होती है शनिवार दोपहर 3:30 बजे से। आकाशवाणी स्टूडियो में आकर अपनी कोई भी कहानी, कविता या कोई वाद्य यंत्र जो भी आप सुनाना चाहते हैं, वह आकर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, जिसका प्रसारण होता है अगले बाल मंडल के कार्यक्रम में। तो बच्चों, कार्यक्रम में समय हो चला है एक कहानी का। कहानी का शीर्षक है यादगार दुनिया, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मनीषा अग्रवाल।
3: ग्रीष्म अवकाश यानी भरपूर मौज मस्ती। जैसे ही स्कूल में छुट्टियों की घोषणा हुई, बस बच्चों में खुशी की लहरें हिलोरे लेने लगी। ले भी क्यों ना, आखिर बच्चे बेसब्री से इंतजार जो करते हैं। बच्चों में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलती है। इस दौरान परीक्षा समाप्त होने की खुशी, होमवर्क से मुक्ति, नाना नानी दादा दादी के घर जाने की कल्पना से पूरा माहौल काफी चंचल और उमंग से भरा होता है। और जब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने वाले तथा एक ही कॉलोनी में रहने वाले हों, तब तो बात ही कुछ और हो जाती है। आरोही, अश्विका, मौलिशा, अमोग और अबीर शाम को सब पार्क में रोजाना ही मिलते थे, परंतु अब न कोई चिंता होमवर्क की, न परीक्षा की, न प्रोजेक्ट आदि बनाने की। दरअसल इनके मम्मी पापा ने गांव से आकर पढ़ाई के कारण एक ही कॉलोनी में घर बनाने का निर्णय लिया था, इसलिए इनके बीच एक पारिवारिक माहौल था। शाम होते ही यथानुसार सब पार्क में पहुंचे। सबके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। सबके मुंह से एक साथ निकला, वाह, अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। अबीर खुशी से चिल्लाने लगा, अरे यारो, मौज मस्ती हो गई सस्ती। तभी आरोही बोली, देखो भाई, हम सब मौज मस्ती तो जरूर करेंगे, लेकिन इस बार कुछ नया करेंगे। केवल मोबाइल और टीवी देखकर पार्क में खेलकर ही सारी छुट्टियां खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, सब विचार करने लगे, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी छुट्टियां मजेदार भी हो और कुछ सीखने को भी मिले। अश्विका, मौलिशा और अमोग तीनों एक साथ बोल उठे, अरे हम लोग तो अब की बार गांव जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो ना। सब मिलकर अपने अपने दादा दादी के पास रहेंगे और वहां मस्ती भी करेंगे। तुम्हारे दादा दादी भी तो तुम्हें याद करते होंगे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज ही जाकर घर में बात करते हैं। बस फिर क्या था, सभी के घर में गांव जाने की तैयारी शुरू हो गई। सभी एक साथ ट्रेन का मजेदार सफर करके गांव पहुंचे, अपने अपने दादा दादी के घर धमाल मचा ले। बच्चों को देखकर सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। दादी दादा देखते ही बोल उठे, आ गई हमारे शहरी बच्चों की टोली। गांव पहुंचते ही तो बच्चों को अलग ही दुनिया दिखाई दी। चारों तरफ हरियाली, आम के पेड़, खुला आसमान और ठंडी ठंडी ताजी हवा। वाह, यहाँ तो कितना सुंदर है, आरुही बोली। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसी की दादी ने तो किसी के दादा ने सबको जगा दिया। उठो उठो बच्चों, यहाँ पर सब रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह की सैर का आनंद लेते हैं। उठते हुए तो सभी बच्चों को जोर पड़ा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें, खासकर आम के बगीचों में कोयल की मधुर कूक और उगता हुआ सूरज देखकर फूले नहीं समाए। दादाजी ने कहा, चलो बच्चों, आज हम तुम सबको अपने खेत घुमाते हैं। देखो बच्चों, ये है गेहूं के खेत। अश्विका और अमोघ एक साथ बोल उठे, दादाजी किसान कितना काम करते हैं। हाँ बेटा, तभी तो हम लोगों को खाने को अन्न मिलता है। दादाजी ने कहा, चलो बच्चों, अब आम के बगीचों में चलते हैं। हाँ हाँ दादाजी, जल्दी चलो। वहाँ चारपाई पर बैठकर किसान बगीचे की देखरेख कर रहे थे। कोयल कूक रही थी, बच्चों की खुशी देखते ही बन पड़ रही थी। दादाजी भी उछलते कूदते बच्चों की टोली देख बेहद खुश थे। मौलीशा, देखो ना कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। अरे अबीर, तुम तो पेड़ पर ही चढ़ गए, आरोही बोली। तुम्हें कौन सा आम तोड़ कर दूं, अबीर बोला। अमोघ नीचे खड़ा सब देख रहा था, सावधान अबीर। लेकिन तभी अबीर का पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिरा। सब डर गए, लेकिन उठते ही हंसने लगा, क्योंकि घास के ढेर पर कोई खास चोट नहीं आई। अरे यार, आम तोड़ना भी एक कला है, हर एक के बस की बात नहीं। पास ही नदी किनारे बैठकर सबने

0: मीठे मीठे आम खाए। दादी जी यहाँ तो कितने मजे हैं। अश्विका ने कहा कोई यहाँ कूड़ा नहीं करेगा। आरोही बोली इतनी सुंदर जगह को भी लोग गंदा क्यों करते हैं। दादाजी सबकी अपनी अपनी सोच है बेटा, चलो चलो क्यों ना हम सब बच्चे आज से ही सफाई अभियान शुरू करते हैं। वो देखो प्लास्टिक की बोतल और पॉलिथीन जो पड़ी है एकत्र कर लेते हैं। कार्य करने के बाद घर आकर भोजन करके सभी बच्चों ने आराम किया। शाम को गांव के सब बच्चों को बुलाकर एक बड़ी टोली बनाकर अगले दिन फिर सुबह सुबह उठकर पूरे गांव में फैल गए और सफाई अभियान जोरों पर चला। दो चार दिन में ही बच्चों ने पूरे गांव को स्वच्छ बना दिया। गांव के प्रधान भी ये सब देखकर बेहद प्रसन्न हुए। अरे बच्चों तुमने ये नेक काम करके हम सबको सीख दी है। प्रशंसा पाकर तो खुशी मिलती ही है। प्रधान जी ने कहा बेटे आप सबको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दिन में बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहना है। ठीक है दादाजी। अब हम सब सोचने लगे दिन भर क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। तभी आरोही की दादी ने देखा बच्चे कुछ सोच में पड़े हैं। अबीर बोला अब बताओ ना दादी, हम दिन में बाहर नहीं जा सकते, मोबाइल हमारे पास है नहीं। अरे भाई तो तुम परेशान क्यों होते हो, सब लोग भोजन करो और दालान में एकत्र हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे खेल बताऊंगी जो तुम घर में बैठकर ही खेल सकोगे, तुम्हारी छुट्टियां यादगार बन जाएंगी। वो कैसे दादी, मौलिशा बोली अब देखते जाओ। दादी ने कैरम बोर्ड और लूडो निकाला और सबको व्यस्त कर स्वयं अपने काम में लग गईं। आरोही अश्विका अमोग कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर चलाने लगे, गोटियां इधर उधर दौड़ने लगी और अबीर और मौलिशा लूडो में व्यस्त हो गए। इतने में मौलिशा चिल्लाई अरे अबीर मेरी गोटी मत काटना। काट दी ना। अरे मौलिशा यही तो खेल का मजा है, तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे संग नहीं खेलता। अरे भाई क्या हो गया, दादी बोली दादी ये चीटिंग बहुत करता है, गलत बात है, मिलजुल कर खेलना चाहिए। तुम सब बोर तो नहीं हो रहे हो, प्रतिदिन सुबह की सैर करते, दोपहर में अपनी अपनी मनपसंद जानवर का अभिनय करते, उस पर कविता करते, तो कभी दादा दादी और बच्चे टोली बनाकर अंताक्षरी करने लगते, कभी दादा दादी से प्रेरणादायक कहानियां सुनते। आरुही बोली कितना मजा आ रहा है ना हमें यहाँ कर, मोबाइल की याद ही नहीं आ रही। तपाक से अमीर बोला अच्छा हुआ मोबाइल नहीं था तो हमने कितनी मस्ती की। अमोग बोला हाँ भैया घर में ही कितने खेल हो सकते हैं, मौलिशा भी कौन कम थी, तुरंत बोली और देखो ना हमारी आंखों को भी आराम मिल गया। दादा दादी चुपचाप बैठे बच्चों की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब रहा नहीं गया तो बोल उठे बच्चों खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें जरूरी नहीं होती, अच्छा साथ उत्साह और कुछ करने का जोश होना चाहिए। धीरे धीरे छुट्टियां भी खत्म हो चली। चलने से एक दिन पहले सब बच्चों की टोली एकत्र हुई। गांव के और बच्चे कहने लगे अगली छुट्टियों में तुम लोग फिर से गाँव जरूर आना, हमें तुम सबकी बहुत याद आएगी। अबीर अमोग बोले ये छुट्टियां हम भी कभी नहीं भूलेंगे। सबने मिलकर तय किया कि अगली छुट्टियां भी हम यहीं बिताएंगे, इंडोर गेम्स का मजा भी लेंगे, शुद्ध वातावरण में रहकर अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी है, तो हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और हाँ इतने में कोई बोला कि हर वक्त मोबाइल के कारण पापा मम्मी की डांट से भी तो बचेंगे। दादी जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया और बोली देखो मेरे प्यारे बच्चों, खेल सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करते, वो हमें दोस्ती धैर्य और टीम वर्क भी सिखाते हैं। सब बच्चे खुश होकर बोले हाँ दादी जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये थी हमारी सबसे मजेदार गर्मियों की छुट्टियाँ। अब हम जान गए हैं कि छुट्टियाँ सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने करने और परिवार के साथ समय बिताकर यादगार बनाने के लिए होती हैं।
1: तो बच्चों कैसी लगी कहानी, अभी आपने जो कहानी सुनी मनीषा अग्रवाल ने सुनाई थी और उसका शीर्षक था यादगार दुनिया।
2: कार्यक्रम में समय हो चला है एक गीत का, आइए सुनते हैं ये बाल गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: जो ये था आज का बाल मंडल कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपने इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। हमने आपको बताया कि आप अपनी छुट्टियों को सिर्फ इसी तरह से न बर्बाद कर दें कि आप मोबाइल फोन में लगे हैं या टीवी देख रहे हैं। आप कहीं घूमने जाइए, अपने लिए अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। और उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि खाना हमें समय पर और ताज़ा खाना है, और जितना आपको खाना है आपको उतना ही लेना है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लेते हैं और आपका पेट भर जाता है, आप उसे छोड़ देते हैं, तो वो भी आप किसान की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप उतना ही अपनी थाली में लें जितना आप उसे खा सकते हैं, चाहे आप दोबारा लें। इस सब के अलावा आपने अपने साथियों की प्रस्तुति भी सुनी और एक कहानी भी सुनी, जिससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और कुछ न कुछ नए करते रहना चाहिए। अब अपनी गीता दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
4: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ। वो भी
5: बच्चों संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
4: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
3: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है।

0: काम है। अमरीकी सेना ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए दो ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा की। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है और देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों से जुड़े कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला राज्य की प्रतिष्ठा और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए सभी विभागों को योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। आनंद स्वरूप ने बताया कि तैयारियों की नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, साथ ही आगामी बैठकों में विभागों के नामित नोडल अधिकारियों की ही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्यों की प्रगति की प्रभावी समीक्षा हो सके।
3: रोड का चौड़ीकरण का काम है, ब्रिजेज का काम है और जो का घाटों का काम है, ये काम अभी किए जा रहे हैं और बाकी जो टेम्पररी काम होने हैं ये सब मानसून के बाद ही होते हैं, तो उनका भी प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया है। विभिन्न विभागों के साथ किस तरह से समन्वय करना है इसका भी पूरा प्लान तैयार है, तो उसके आधार पर फिर हम लोग समय समय पर इसको समीक्षा करते रहेंगे जिसे काम अपनी गति से हो और कुंभ से पहले संपन्न।
2: बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी गौरव कुमार ने की। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सभी निर्माण और विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में यातायात व्यवस्था, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही, पथ प्रकाश, पार्किंग, सीवर निस्तारण, नदी तटों की सुरक्षा तथा अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए धाम को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कार्य चरणबद्ध तरीके से

0: किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की योजना और अध्ययन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। देहरादून में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति, हस्तांतरण की स्थिति तथा संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत 22 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 10 परियोजनाओं को संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष पूर्ण परियोजनाओं के हस्तांतरण की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में ये बताया गया कि ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। परियोजना की प्रगति लगभग 40% होने पर जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी लाने, पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना में हुई देरी के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना ₹300 का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में एक आम उपभोक्ता के लिए खुदरा मूल्य ₹942 है। देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टरवार टीमें गठित कर नियमित निरीक्षण अभियान चला रहा है। MDDA की ओर से शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। देहरादून में कई स्थानों पर निर्माण कार्यों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। वहीं अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के अवैध निर्माण में शामिल न हों।
2: इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं, पारिवारिक स्तर पर भी विवाद हैं और एक दूसरे की जमीन कब्जाने के भी मामले लगातार आते रहते हैं। जो भी अवैध निर्माण है हम लोग सख्ती से उसको निपट रहे हैं। जो अवैध प्लाटिंग है या अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगा जो स्वीकृत मानचित्र और स्वीकृत लेआउट है उसी में सभी लोग खरीदारी करें।
0: हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ व्यापक स्वच्छता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित क्षेत्रों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी पंचायतों और स्थानीय निकायों की होगी। गौरतलब है कि अभियान के चौथे दिन तक लगभग 1000 टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को प्रतिदिन सफाई कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को भी दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं स्वच्छता कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि जिले के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इसके लिए लगातार निगरानी, जन सहभागिता और विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच यात्रा शुरू होने से अब तक आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 18 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें पुलिस द्वारा 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार अवैध ड्रग्स पर चरस तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन। बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा की। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है और देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह सुल्तान पीरी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, धरती कहे पुकार के फिल्म से। अब आइए आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में मोहरा फिल्म से ये अगला गीत। शब्द रचना इंदिवर की है और इसे संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने।

0: Akashwadi at 90.
1: अब आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म से ये अगला गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। शब्द रचना SH बिहारी और नूर देवासी की है और इसे संगीत में पिरोया है OP नैयर ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अब आइए सुनवाते हैं आपको बप्पी लहरी का संगीत बद्ध किया ये अगला गीत, आंगन की गली फिल्म से। शब्द रचना शैलेश शैलेंद्र की है।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस दे
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: आकाशवाणी देहरादून से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी नगमों का फिल्म संगीत में। अब आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में चरस फिल्म से ये अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में अंधा कानून फिल्म से ये अगला गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इसे सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 26. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय

0: प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष ₹300 की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत ₹942 है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर ₹29 की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹942 हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
3: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सैनिकों के लिए खास कार्यक्रम फिल्म संगीत।

जय हिंद सैनिक साथियों, आज कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारत के उस वीर सैनिक की जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति से इतिहास रचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर ऋषिकेश रमानी की, जिन्होंने साहस और देशभक्ति का एक अमर उदाहरण प्रस्तुत किया। अब आइए प्रकाश डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1983 को एक गौरवशाली गुजराती परिवार में हुआ था। वे श्री वल्लभ भाई रमानी और श्रीमती गीताबेन रमानी के एक लौते पुत्र थे। आगे और भी बातें करेंगे इनके जीवन से जुड़ी, पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

सैनिक साथियों, बचपन से ही मेजर ऋषिकेश में ऐसे गुण थे जो उन्हें अपने साथियों से अलग करते थे। उनकी अनुशासित परवरिश और देशभक्ति की भावना ने सशस्त्र बलों में उनके भावी करियर की नींव रखी। एक उत्कृष्ट छात्र होने के नाते उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सैनिक स्कूल में अपने वर्षों के दौरान मेजर ऋषिकेश ने साहसिक और बाहरी गतिविधियों में गहरी रुचि विकसित की। देश की सेवा करने के अपने सपने को लेकर उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का निर्णय लिया। उनका चयन पुणे स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के लिए सिलेक्शन हुआ, जहाँ उन्होंने कठोर सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी क्षमता कौशल को और ज्यादा उन्होंने निखारा।

पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ, जो भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। उनकी क्षमता और सैनिक जीवन के प्रति साहसिक दृष्टिकोण को पहचानते हुए सेना ने उन्हें विशेष अभियान कार्यबल में सेवा के लिए चुना। कुछ ही समय में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण ने उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नति दिलाई। श्रोताओं, एक जोखिम भरे ऑपरेशन को उन्होंने निस्तेनाबूद कर दिया। आगे बताएंगे उस ऑपरेशन के बारे में, पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

जी हाँ सैनिक साथियों, हम बात कर रहे थे एक ऐसे ऑपरेशन की जो मेजर ऋषिकेश रोमानी का आखिरी ऑपरेशन साबित हुआ, कुपवाड़ा ऑपरेशन। मार्च 2009 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए मेजर रोमानी की यूनिट को तैनात किया गया था। उस समय वे एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्यरत थे। 7 जून 2009 को उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर एलओसी के पार आतंकवादियों की आवाजाही का पता लगाने और उसे रोकने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। मध्यरात्रि मेजर रोमानी ने एलओसी के लगभग 3 किलोमीटर अंदर स्थित गुलाब पोस्ट के पास 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को एक समूह में आते हुए देखा और वे चुपके से आगे बढ़ते हुए उन्हें देखा। आतंकवादियों का सामना करते हुए मेजर रोमानी के सीने और पेट में 12 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने युद्ध से पीछे हटने से इनकार कर दिया। ऐसे गंभीर हालत में भी उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे घुसपैठ का प्रयास विफल हो गया और ये ऑपरेशन भी जो है सफलता के रूप में तब्दील हो गया। मेजर ऋषिकेश शहीद हो गए आज ही के दिन यानी 7 जून। उनकी इस शहादत को पूरा देश याद रखेगा।

राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देकर मेजर ऋषिकेश रोमानी ने ये साबित कर दिखाया कि देश सबसे पहले है। उनकी इसी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के कारण उन्हें मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया। उनकी वीरतापूर्ण विरासत सैनिकों और नागरिकों की पीढ़ियों के लिए प्रेरित साबित हुई। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें शत शत नमन करता है। उनके बलिदान को सलाम है।

सैनिक साथियों, इसी देशभक्ति गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए ये खास कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है गाने नए तराने फिल्मी गीत।

जी हाँ, विजय येसुदास और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आपने चुप चुप की फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। अब आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक्शन रिप्ले फिल्म से ये अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और इसे शुरू में पिरोया है प्रीतम ने।

अब आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म से अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये अगला गीत। शब्द रचना समीर की है और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं गाने नए तराने फिल्मी गीतों के। अब आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कलंक फिल्म से ये अगला गीत श्रेया घोषाल और वैशाली महाड़े की आवाजों में। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सईद कादरी का लिखा ये अगला गीत आप तक पहुंच रहा है राहत फतेह अली खान की आवाज में, ब्लड मनी फिल्म से। संगीतकार है जीत गांगुली।

अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं सोनू निगम और परिणीति चोपड़ा की आवाज़ों में मेरी प्यारी बिंदु फिल्म से ये अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, गाने नए तराने फिल्मी गीतों में अब आइए सुनते।

0: सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 4 बजने को है, अब लीजिए प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुनस्यारी में जनपद में संचालित विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अल्मोड़ा के युवा सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित खानपान के प्रति जागरूक किया गया। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी गौरव कुमार ने की। देहरादून में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति, हस्तांतरण की स्थिति तथा संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा की और हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ व्यापक स्वच्छता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:02:16 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अब लीजिए प्रस्तुत है पीयूष कश्यप का गाया ख्याल, राग मधुवती पर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पीयूष कश्यप का गाया ख्याल राग मधुमति पर। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। 4:30 हुए हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है एक ही कलाकार का कार्यक्रम। स्वागत अभिनंदन स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा की ओर से। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जो अपनी सादगी से लाखों दिलों में राज करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री अमृता राव की, जिन्होंने विवाह जैसी सदाबहार फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। सादगी वाली छवि भोलापन उनके किरदार में चार चांद लगा देता है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं

जी हाँ, जॉली एलएलबी फिल्म से अभी आपने कमल खान की आवाज़ में ये गीत सुना। श्रोताओं, वैसे तो अमृता राव का पूरा नाम अमृता दीपक राव

है। उनका जन्म 7 जून 1981 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वैसे तो वो पारंपरिक कोंकणी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता दीपक राव एक व्यवसायी हैं और उनकी एक छोटी बहन प्रीतिका राव भी एक मॉडल और अभिनेत्री है। स्कूली शिक्षा मुंबई के केनोसा कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल में हुई। वैसे तो करियर की शुरुआत कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग से हो गई थी। शुरुआत दिनों में कई एड्स भी अमृता राव को मिले। उसी दौरान उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला। शुरू से ही अमृता राव मेहनती और अपने काम के प्रति सीरियस रही हैं। वैसे एक बात तो है उनकी श्रोताओं कि वो हर रोल में बखूबी फिट हो जाती हैं। भले ही उनकी छवि सादगी भोलेपन की है, लेकिन जब किसी किरदार को करने की बात आती है तो वो बखूबी उसे निभाती हैं।

श्रोताओं, अगर निजी जीवन की बात की जाए तो अमृता राव ने 15 मई 2016 को अपने लंबे समय के प्रेमी रेडियो जॉकी अनमोल के साथ एक निजी समारोह में शादी की। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम वीर है। हालांकि काफी समय से फिल्मों से दूर रहने के बावजूद वह अपने पति के साथ मिलकर अपने पॉडकास्ट चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों से जुड़ी रहती हैं। दाम्पत्य जीवन को वो बेहद ही सादगी से बिता रही हैं, जैसे कि वो असल जिंदगी में हैं। वैसे तो फिल्मों में आने से पहले लगभग 35 से अधिक विज्ञापनों में उन्होंने काम किया था। सबसे बड़ा ब्रेक अमृता राव को कैडबरी पर्क के एडवर्टाइजमेंट से मिला था। इसी विज्ञापन को देखकर निर्देशक केन घोष ने उन्हें अपनी फिल्म इश्क विश्क के लिए साइन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सराही गई थी। अभिनय के अलावा क्लासिकल सिंगिंग में भी उनकी रुचि है। इसी कारण साल 2016 में टीवी शो जो आया था, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अमृता राव ने उन्होंने काम किया, जो लता मंगेशकर और आशा भोसले के जीवन से प्रेरित थी। तो आइए श्रोताओं, अब उन्हीं पर फिल्माया ये अगला गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं अपनी मासूमियत और सादगी भरी छवि बनाने वाली अमृता राव की। उन्होंने बॉलीवुड में पहली शुरुआत 2002 में अब की बरस फिल्म से कदम रखा और उसी वर्ष वह अजय देवगन स्टारर ऐतिहासिक फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मंगेतर मनी के छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार में दिखी। फिर 2003 में आई इश्क विश्क फिल्म से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। उसके बाद तो फिल्मों का जो सिलसिला है वो चलता रहा। 2004 में आई मल्टी स्टारर फिल्म मस्ती में एक पॉजिटिव पत्नी का उन्होंने कॉमिक रोल प्ले किया। फिर आप सभी जानते हैं कि मैं हूं ना फिल्म में जो संजना के किरदार में एक टॉम बॉय और फिर ग्लैमरस लुक जो था अमृता राव का उन्होंने बखूबी निभाया। 2006 की बात की जाए तो जो फिल्म विवाह है उसे कौन भूल सकता है। शाहिद कपूर के साथ उनकी जो केमिस्ट्री बेहद पॉपुलर रही। और भी श्रोताओं कई ऐसी फिल्में रही जैसे कि वेलकम टू सज्जनपुर जो 2008 में आई थी, जॉली एलएलबी जो 2013 में, सिंह साहब द ग्रेट और बाल ठाकरे के जीवन पर आधारित फिल्म ठाकरे। अमृता राव ने जो उसका किरदार जो निभाया था वो एकदम ही अलग था।

श्रोताओं, अब बात करें पुरस्कारों की तो IIFA ने साल 2004 में फिल्म इश्क विश्क के लिए अमृता राव को स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। स्टारडस्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म के लिए। साल 2007 में शाहिद

के साथ फिल्म विवाह के लिए उन्होंने स्टार स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, वैसे तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अमृता राव ने अपने पति के साथ मिलकर एक किताब कपल ऑफ थिंग्स लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी सीक्रेट लव स्टोरी और शादी के अनसुने पन्नों को दुनिया के सामने रखा है।

श्रोताओं, आज हमने बात की अपनी सादगी भोलेपन से लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री अमृता राव की। आज उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं और आपको इस गीत के साथ मैं छोड़े चली जाती हूँ। अब मुझे यानी पीयूष स्वधा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एक कलाकार। आज की कलाकार थी अभिनेत्री अमृता राव। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले
1: समाप्त करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्ची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पर्वत्यांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:45 पर। साय 7 बजे कार्यक्रम कृषि जगत में आज किसान साथी सुनेंगे पीसी जोशी से भेंट वार्ता, विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सरकार के 12 साल। काव्यांजलि कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा राजकुमारी की काव्य पाठ। कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। चंद्रकला जोशी के स्वर में गाए कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे शैल संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक आवाज जो देश बदलती है, आलेख एवं प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की। विविध कलाकारों के स्वर में गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनिएगा लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 10:35 पर। सुबह 10:02 पर प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से रमेश चंद्रा की बातचीत। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर गृहस्थी में श्रोता सुनेंगे पर्यटन और स्वरोजगार के विषय पर डॉक्टर आशा बाला की वार्ता। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 4:02 पर सुनिएगा गौरी पठारे का ख्याल गायन। फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:15 पर, अपराहन 3:02 पर, साय 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम पंत
1: और मैं आकांक्षा शर्मा आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ।
0: दोस्तों, आज हम सबसे पहले एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि युवाओं की रचनात्मकता को नई दिशा देने का काम कर रही है। इस योजना का नाम है युवा स्कीम।
1: दोस्तों, युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स,
0: ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक विशेष पहल है।

0: जिसका उद्देश्य देश के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना और उनकी लेखन प्रतिभा को निखारना है।
1: दोस्तों, अगर आपको लिखने का शौक है, जैसे कि कहानियाँ, लेख, कविताएँ या किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना पसंद है, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है।
0: इस योजना के तहत युवा लेखकों को चयनित किया जाएगा और उन्हें अनुभवी लेखकों तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी लेखन क्षमता को विकसित करने का मौका मिलेगा।
1: इतना ही नहीं दोस्तों, चयनित प्रतिभागियों को मेंटोरशिप, प्रशिक्षण और अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने का अवसर भी मिल सकता है।
0: युवा स्कीम का उद्देश्य केवल अच्छे लेखक तैयार करना ही नहीं है, बल्कि युवाओं में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास तथा रेलेवेंट टॉपिक्स पर लिखने को प्रोत्साहित करना भी है।
1: दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और छोटे छोटे कंटेंट का बोलबाला है, वहीं युवा स्कीम युवाओं को गंभीर और रचनात्मक लेखन की ओर प्रेरित करती है।
0: ये योजना उन युवाओं के लिए एक शानदार मंच है जो अपने विचारों को शब्दों में ढालकर समाज तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: लेखन केवल एक कला नहीं है दोस्तों, बल्कि समाज को दिशा देने का एक प्रभावशाली माध्यम भी है, और यही संदेश युवा स्कीम युवाओं तक पहुंचाना चाहती है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अनोखा विचार, लिखने का जुनून और अपनी पहचान बनाने का जज्बा है, तो युवा स्कीम के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और इससे जुड़िए।
1: क्योंकि एक अच्छी किताब, एक अच्छा विचार और एक अच्छा लेखक समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
0: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपने सपनों को नई उड़ान देते रहिए। आइए सुनते हैं इसी के साथ ये गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, जिसे लिया गया है फिल्म सिमरन से।

0: दोस्तों, हम युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हर रविवार आप सभी के लिए लेकर आते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जहां हम आपसे जुड़ते हैं फोन के जरिए और जानते हैं आपके विचार, वो भी विभिन्न विषयों पर।
1: इसी क्रम में प्रस्तुत है दोस्तों आज का हमारा हेलो फ्रेंड्स सेगमेंट, जहां हमने जाने हैं हमारे युवा साथियों के विचार। और आज का हमारा विषय है हिंदी गानों को प्रमोट करने में आकाशवाणी की भूमिका। आइए सुनते हैं हेलो फ्रेंड्स।
0: हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका?
2: सर मेरा नाम मोहम्मद अनस है।
0: तो अनस, कहाँ से जुड़े हैं आप आज हमारे साथ?
2: सर मैं देहरादून से। सर
0: अच्छा, तो अनस,
2: यस सर।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि रेडियो को लोग गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका मेन पर्पस क्या है रेडियो यूज़ करने का?
2: मेरा मेन पर्पस मोस्टली कभी कभी ज्यादातर मेरा न्यूज से रिलेटेड होता है, बट कभी कभी जो मुझे ज्यादा पसंद आता है, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें गाने के लिए होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ गाने रैंडमली भी सुनने पसंद आते हैं, हमें कई बार चूज नहीं करना पड़ता कि क्या बजाए क्या हो। तो उसमें एक रेडियो में थोड़ा सा मुझे ये अच्छी चीज लगती है कि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, और मतलब थोड़ा एक क्लासिकल वे लगता है मुझे, जिसकी आजकल के टाइम पे यूट्यूब के टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा पर्सनली ये ज्यादा फील होता है कि या रेडियो समवेयर डिफरेंट, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है।
0: आपको ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग लगता है। तो
2: जी सर।
0: अनस, आम तौर पर किस तरीके के गाने आप सुनते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो हिंदी गाने हैं उन्हें प्रमोट करने में आकाशवाणी ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है?
2: सर अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी गाने प्रमोट करने के लिए, तो सर जो बताऊँ तो जब से नहीं, मैं काफी टाइम पहले से ही अपने पेरेंट्स से भी सुनता हूँ, तो मतलब कि गाने जो है आकाशवाणी में जो बजते हैं तो वो काफी टाइम से सुनता है, तो ये नहीं कह सकते हम कि अभी अभी आए हैं, या फिर वो काफी टाइम से इनका योगदान रहा है इस चीज में, जो अब अगर मैं अपने उससे बताऊं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर दिस ऑल दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब या फिर ये सब, आकाशवाणी ने काफी ज्यादा इसमें प्रमोट करा है गाने की वजह से। कई बार मैंने ये भी सुना है कि लोग वेट करते थे कि किसी गाने के लिए कि वो गाना आएगा तब हम सुनेंगे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा एक क्रेज इसने और जनरेट किया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने वाली भी चीज है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को ये चीज पता है कि ऑब्वियसली रेडियो ने सॉन्ग्स के लिए और स्पेशली हिंदी गाने के लिए तो काफी ज्यादा प्रमोट किया ही किया है।
0: तो अनस, आज के हमारे इस हेलो फ्रेंड सेगमेंट में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहें?
2: सर मैं थोड़ा सा पुराना सुनता हूँ, जैसे क्लासिकल गाने ज्यादा सुनने पसंद है, बट अभी के लिए मैं एक राज कपूर साहब की मूवी का एक गाना पसंद करूंगा, आवारा हूँ।
0: चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपका ये गीत जरूर इंक्लूड करेंगे और आपको आपका फेवरेट गीत सुनाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपने आज हमारे
2: वेलकम
0: साथ
2: सर,
0: अपने
2: थैंक
0: विचार साझा करे, बहुत बहुत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: कहाँ से जुड़े हैं आप आज हमारे साथ?
1: मैं देहरादून से जुड़ी हूँ।
0: जी, और आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम अनुष्का है।
0: जी, तो अनुष्का, क्या करती हैं आप मौजूदा समय में?
1: मैं फिलहाल तो कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ और मैं बीसीए कर रही हूँ।
0: अरे वाह, फिर तो आपका दिन काफी हेक्टिक रहता होगा।
1: हाँ, मेरा दिन सुबह कॉलेज जाने से फिर शाम को घर आने तक बिजी शेड्यूल ही रहता।
0: तो आप आकाशवाणी सुनने के लिए टाइम कब निकालती हैं फिर दिन में?
1: जब मैं

0: कॉलेज के घर आ रही होती हूँ, उस वक्त बस में मैं आकाशवाणी सुनती हूँ।
1: अरे वाह, तो उस समय पे किस टाइप के गाने सुनना पसंद करती हैं आप?
0: मैं जनरली पुराने जमाने के गाने सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ।
1: ठीक है, किस किस टाइप के गाने आप सुनती हैं?
0: मैं देशभक्ति गीत सुनना पसंद करती हूँ और मैं गढ़वाली गाने भी सुन लेती हूँ, और फिर पुराने जमाने के जो गीत होते हैं जैसे जैसे लता मंगेशकर के गाने।
1: आपको क्या लगता है अनुष्का, कि जो बॉलीवुड के जो गाने हैं जो इतने प्रमोट किए जाते हैं, हमारी हिंदी भाषा के जो गाने हैं जिन्हें इतना प्रमोट किया जाता है और हर जगह जिन्हें सुना जाता है, तो उसे इस मंच तक पहुंचाने में आकाशवाणी का क्या रोल रहा है?
0: आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय रेडियो प्रसारण माध्यम है। जब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के दौर में भी आकाशवाणी सुनते हैं, तो आकाशवाणी का योगदान बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि वो फिर सुन के गानों को इंजॉय करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। तो आकाशवाणी जिन एरिया में इंटरनेट नहीं जाता है, उन एरिया में आकाशवाणी की नेटवर्क पहुंच जाता है, तो उन एरिया में भी आकाशवाणी न केवल फिल्मी गाने बल्कि जो नए नए उभरते हुए कलाकार हैं, जो पुराने कलाकार हैं, उन सभी के गानों को सुनाता है। तो इसमें आकाशवाणी का बहुत रोल रहा है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकाशवाणी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ आज साझा करी हैं और आपने कही हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा अनुष्का, कि आज के हेलो फ्रेंड सेगमेंट में आप अपना कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, आपकी पसंद का?
0: मैं सुनना चाहूंगी गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रहे हैं कल कल।
1: ज़रूर, आपका ये गीत हम आज के इस कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे, आपको आपका ये पसंदीदा गीत सुनाएंगे। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आप सुनते रहिए गीत, और इसी तरह आप सुनते रहिए नए नए गाने, खूब सारे इन्फॉर्मेशन हमारी युववाणी कार्यक्रम में और आकाशवाणी पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा करें।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप?
1: जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आप कौन है हमारे साथ? जी
0: जी, मैं सक्षम पन बात कर रहा हूँ यहाँ आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और आज आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ?
1: आज मैं उत्तर प्रदेश जिला शामली से आपके साथ जुड़ा हूँ सर।
0: तो इसी के साथ आप अपना नाम भी बता दीजिए।
1: गुलजार।
0: पहली बात तो थैंक्स अ लॉट कि आप आज हमारे हेलो फ्रेंड सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े।
1: जी सर।
0: आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि हिंदी गानों को प्रमोट करने में आकाशवाणी की क्या भूमिका है?
1: हिंदी गानों को प्रमोट करने में हमारा कहना तो सर ये है कि हमें सब तरह के गाने ही अच्छे लगते हैं, यही प्रमोट करने में यही हमारे लिए सहायक है सर। गानों को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। पहले गाने दूसरी तरह करते थे, अब थोड़े आवाज को जो है थोड़ा और बारीक कर दिया गया है।
0: जी, आप किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं?
1: जी, मैं श्री घोषाल के तो मैं सभी तरह के गाने पसंद करता हूँ, चाहे कोई भी अदर सिंगर, कोई भी अदाकार हो, कोई भी सिंगर हो, चाहे कुमार सानू हो, श्री घोषाल हो, सभी सिंगरों के गाने सुनना पसंद करता हूँ सर। मुझे आकाशवाणी पे वो गाना है ना, ये जो पुष्पा 2 फिल्म आई है उसी का गाना यही चलता है कि अंगारों का अंबर सा लगता है मेरे सामने।
0: ये गाना आज के कार्यक्रम में हम ज़रूर शामिल करेंगे और आपको सुनाएंगे आपका ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा हेलो फ्रेंड सेगमेंट, जहां आज हमने अपने युवा साथियों से जाने उनके विचार हिंदी गानों को प्रमोट करने में आकाशवाणी की भूमिका विषय पर। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये स्पेशल सेगमेंट पसंद आया होगा।
1: दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल हम सभी रोज़ करते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर्वर फार्म्स की।
0: दोस्तों, जब आप कोई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, या फिर क्लाउड पर आप कोई भी फाइलें सेव करते हैं, तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है।
1: और जिस जगह हजारों या लाखों कंप्यूटर सर्वर एक साथ रखे जाते हैं, उसे सर्वर फार्म या डेटा सेंटर कहा जाता है।
0: अब दोस्तों, इसे फार्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एक फार्म में बड़ी संख्या में फसलें होती हैं, वैसे ही सर्वर फार्म में भी बड़ी संख्या में सर्वर एक साथ काम करते हैं।
1: ये सर्वर 2400 घंटे चलते रहते हैं दोस्तों, और दुनिया भर के करोड़ों लोगों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
0: उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, या फिर ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो उसका डेटा अक्सर किसी सर्वर फार्म पर सेव्ड होता है और फिर आपके डिवाइस तक पहुंचता है।
1: दोस्तों, सर्वर फार्म्स को चलाने के लिए बहुत अधिक बिजली और तेज इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत होती है।
0: साथ ही दोस्तों, इन सर्वर्स को ठंडा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि लगातार काम करने की वजह से ये काफ़ी गर्मी पैदा करते हैं।
1: इसी कारण बड़े बड़े टेक्नोलॉजी संस्थान अपने डेटा सेंटर्स को ऐसी जगहों पर स्थापित करते हैं जहां बिजली, इंटरनेट और कूलिंग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।
0: आज के डिजिटल युग में सर्वर फार्म इंटरनेट की रीढ़ माने जाते हैं। इनके बिना क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बैंकिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसी सुविधाएं संभव नहीं हो पाती।
1: जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे सर्वर फार्म्स का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फोटो अपलोड करें या फिर ऑनलाइन वीडियो देखें, तो याद रखिए कि उसके पीछे कहीं हजारों उस सर्वर्स की मेहनत है।
1: क्योंकि डिजिटल दुनिया को चलाने में सर्वर फार्म्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जानकारी बढ़ाइए, तकनीक को समझिए और डिजिटल दुनिया से जुड़े रहिए। दोस्तों, हमारा ये इन्फोटेनमेंट का सफर यूं ही जारी रहेगा, उससे पहले सुन लीजिए ये जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो नामों के बारे में जिन्होंने भारत के मनोरंजन जगत को नई पहचान दी, और ये दो नाम हैं

0: हॉलीवुड और आकाशवाणी।
1: बिल्कुल सक्षम। जब भी भारतीय सिनेमा की बात होती है, बॉलीवुड का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड के कई कलाकारों, गीतों और कहानियों को घर घर तक पहुंचाने में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक समय ऐसा था दोस्तों जब हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। लोग रेडियो पर ही दुनिया की खबरें, संगीत और मनोरंजन को सुना करते थे। ऐसे में फिल्मों के जो गीत हुआ करते थे उन्हें लोकप्रिय बनाने में एक बड़ा माध्यम था आकाशवाणी।
1: और यही वजह है दोस्तों कि कई फिल्में गीत पहले रेडियो पर हिट हुए, फिर लोगों ने उन्हें सिनेमाघरों में जाकर सुना और देखा।
0: दोस्तों आकाशवाणी की शुरुआत साल 1936 में हुई थी। धीरे धीरे ये देश का सबसे भरोसेमंद प्रसारण माध्यम बन गया। वहीं भारतीय सिनेमा भी लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था।
1: 1990 और 60 के दशक को भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर कहा जाता है दोस्तों। उस समय मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे महान कलाकारों की आवाज़ें रेडियो के माध्यम से हर दिल तक पहुंचती थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कार्यक्रम जिसने इतिहास रच दिया। बिना के गीतमाला, अमीन सयानी की आवाज़ और लोकप्रिय फिल्मी गीतों की गिनती सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे।
0: बिल्कुल। और उस दौर में मनोरंजन का ही साधन नहीं था रेडियो, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी हिस्सा था। नई फिल्मों की जानकारी, कलाकारों के इंटरव्यूज और गीतों को लोकप्रिय बनाने में या फिर उनकी लोकप्रियता जानने में रेडियो का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था।
1: आज भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का दौर हो दोस्तों, लेकिन आकाशवाणी की पहचान और विश्वसनीयता आज भी कायम है। बॉलीवुड के कलाकार आज भी आकाशवाणी के मंच पर अपने अनुभव साझा करते हैं।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, कई फिल्मों में रेडियो और रेडियो जॉकी की भूमिका को भी बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि रेडियो और सिनेमा का रिश्ता कितना गहरा है।
1: दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें कहानियाँ दी, सपने दिए और संगीत दिया, जबकि आकाशवाणी ने उन कहानियों और गीतों को करोड़ों लोगों तक पहुँचाने का काम किया।
0: यानी अगर बॉलीवुड कोई रंगीन तस्वीर है तो आकाशवाणी उसकी मधुर आवाज है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने सक्षम। तो दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू से और जिसे आवाज़ दी है लहम्बर हुसैन पुरी ने।

0: दोस्तों, आज हमने हमारे युवाणी कार्यक्रम में आप सभी से बात करी युवा स्कीम के बारे में, जहाँ पे उभरते कलाकारों और लेखकों को एक प्रोत्साहन, एक मंच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने आज जाना कि असल में क्या होते हैं सर्वर फार्म्स, जो कि बैकबोन माने जाते हैं हमारे पूरे डिजिटल सिस्टम की, जिनकी वजह से फोटोज़ को अपलोड करना, डेटा को एक्सेस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना बेहद आसान हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करी, जो था बॉलीवुड और आकाशवाणी का सफ़र, जिसमें हमने जाना कि आखिर ये रिश्ता कितने पुराने समय से चलता आ रहा है और इसका हमारे सबके मन में क्या महत्व है। साथ ही दोस्तों, आज हमारे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में हमने बात करी हमारे युवा साथियों से, और आज का हमारा विषय था हिंदी गानों को प्रमोट करने में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में, जहां हमारे सभी युवा साथियों ने हमको अपने विचार बताए और अपने अनुभव साझा करे। इसी के साथ दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का।
1: मगर जाने से पहले दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, पिन कोड है 2480001। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
0: साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश व सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com।
1: इसी के साथ आप मुझे यानी आकांक्षा शर्मा
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुंदरा हमारा सब भी श्रोताओं के हैं रमन रावत को नमस्कार सेवा सौरी दगड़ा ही आज का कार्यक्रम के मेरी दगड़िया कुसुम कुते भी मेरू बहुत बहुत नमस्कार
1: नमस्कार और ग्राम जगत सुनने वाले हमारे सब श्रोताओं के हैं मी कुसुम पिलखवाल तरफ बेटी ले पहला प्रणाम और नानती नन के ढेर सारा प्रेम शुभाशीष।
0: तो सुंदरो आप तो पता ही छे कि आज एतवार छे आप लोग समझी गए होला कि मैं क्या बुंचाणो छो है ना। तो जी हाँ गीत सुनना को तय चिट्ठी भेजन वामा गीत का बोल गीतांग को नो अपड़ू नो और अपड़ू पता जरूर लिखन जहाँ कि हम तय पता लग साकू कि ये कार्यक्रम का माध्यम से हमारा सुनदरा हमारा श्रोता कक कक बिटी की हम दगड़ी जुड़िया छन। तो दगड़िया उन तो हमारा श्रोताओं ते हमारू पता मालूम छ ना पर कभी कभी क्या होंदो कि कुछ नया श्रोता भी जुड़ जान हम दगड़ी अब उन अगर सुनी होलू तो वो ना हो लगे चिट्ठी क्या हम भेजन
1: तो मैं बता दी पे
0: हाँ वही बन जाओ छ
1: बहनी हाँ। श्रोताओं के बता दी ना हमारी चिट्ठी पत्र झटपटांग वाले
0: हाँ
1: चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com
0: तो धैर्य हमन लगे एली और हम सासर लगे छा कि आप लोग सरासर चिट्ठी भेजला और आपकी पसंद का गीत हम झर चटाक से एक बिटी के सुनोला। तो दगड़िया हमन धैर्य लगे एली और अब लगनो छे कि हमारा जो सुंदरा छन वो चिट्ठी लिखण में भी देर निकलला पर जबर तक हमारा सुंदरों की चिट्ठी आंदन तबर तक किले ना हम अपनी पसंद को कोई गीत सुना दिया है ना। तो क्या सुनाना छा आज हम
1: होई बहनी तो अब श्रोताओं के सुना दिनू प्रीतम भरतवान को गायो यो भलो भल गढ़वाली गीत।
0: हाँ

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
3: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोता, रविवार है, फिर पहले आपन सुनो प्रीतम भरतवान को गायो यो भलो भल गढ़वाली गीत। और आशा करनो कि यो गीत आप सबन श्रोता के भल लागू नल ने।
5: बिल्कुल लगी होलो, इका सुंदर गीत छे।
4: होई बहनी, और कब बटी टप कर भी तुम या फोन में देखना छे, कोई चिट्ठी है नहीं है?
5: हाँ बिल्कुल आई छे, देखना तो पड़ो ना।
4: होई
5: कि हमारी दया लगाई छ, तो लोग चिट्ठी भी जरूर भेजला। उम्मीद करनु छ ये चिट्ठी आई छ डिफेंस कॉलोनी बिटी, देहरादून बिटी के। और यू लिखना छन कि यू नियमित श्रोता छन और दगड़ा ही सीनियर सिटीजन भी छन। और यूं को नौ छ वी के सिंह कार्की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले तो आपन चिट्ठी भेजी। और यू गीत सुनने चाहना छ ना, ज्योति उपरेती सती को गयूं, कोई भी गीत बल है ना। तो गीत भी हम छ, तो आवाज सुन दा सब भी मिली की यू सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओ रविवार है, पहले अपन सुनो ज्योति उप्रेती को गायो भलु भलियो कुमाऊनी गीत और विजय कार्की जी के गीत बहुत भल लगुनल और उनर अलावा जो हमारे दोहर श्रोता सुनने ना उनके लिए भल लगुनल।
8: बहुत सुंदर गीत छ, बहुत सुंदर गीत छ और उम्मीद छ कि हमारा सभी सुन दो रहता है ये गीत बहुत अच्छा लगी होलू। अगली चिट्ठी पढ़ू छो दगड़िया में, ये चिट्ठिया दिल्ली बिटी की विकास सकलानी, सौम्या सकलानी, लकी सकलानी, अनब सकलानी की और यू सुनने चाणा छन गीत आ लीली बखरी लीली छू छू। बुना छन की स्वर नाम याद नीजवल तो हम आपने याद दिला देना कि गीत च यू हीरा सिंह राणा को पर जो गीत हम आप सुनाना छा वो गयी उच बीना तिवारी को। आवा सुनदा यू सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: श्रोताओं, अल्लाह अपन सुनो बीना तिवारी को गायो भलो भल कुमाऊनी गीत। और बेणी, हमार जो चिट्ठी लिखवार छी ने उनके लिए वो गीत भल लगू नल ने, और हमारे दो श्रोताओं के लिए ने
1: बिल्कुल लगी होलो।
0: और बेणी,
1: अब अगली चिट्ठी पढ़ लियो ने, तुम्हारी इजाजत होली तो पढ़ लो। अगली चिट्ठी आई है जागृति विहार नेहरू ग्राम रोड नथनपुर देहरादून बिटी की, और आप समझी गए होला कि क्या की चिट्ठी होली। जो हमारा सदनी का लिखवार छन विनीता थपलियाल जी, है ना, उनकी चिट्ठी चिया बुनी छन की ग्राम जगत की पूरी कुटुम्बदारी है रमन रावत और उनकी दगड़िया प्रस्तुत करता थे विनीता थपलाल की तरफा से सेवा सोली नमस्कार। हमारी तरफा बेटी भी नमस्कार और धन्यवाद जो आपको की आपन चिट्ठी लिखी हमारा ये कार्यक्रम तय सुंदर बनाने को तय बुनी छन की कार्यक्रम माँ फूल रसायण आनी चे, तो बहुत बहुत धन्यवाद चे की आपने अच्छा लगनू चे कार्यक्रम। हमारी भी यही कोशिश रही की हमारा सुंदर जो छन तय कार्यक्रम बढ़िया लगू। आपसे निवेदन छे कि माधवी बर्थवाल की आवाज माँ कभी सीला पाखों रीटू कभी तैला घाम गढ़ोली गीत सुनाने की कृपा करला, धन्यवाद। कृपा तो हम जरूर करला, है ना,

और जब हम वो नाच हाँ की चिट्ठी भेजा तो कोशिश भी कर ला कि आपकी पसंद का गीत हम आप लोग को सुने सका। तो आवाज सुनदा माधुरी बर्थवाल को गई हूँ यू सुंदर सी खुदेड़ गीत।

0: श्रोताओं अपन सुनो माधुरी बर्थफाल को गायो भलो भलियो गढ़वाली गीत और आशा करनो कि हमार चिट्ठी के लिखवार विनीता थपलियाल जी के लिए गीत भल लागुनल। और बैनी जो ये विनीता थपलियाल जी छे नी या जो हमन के चिट्ठी लिखने ने तो हमन के बहुत भल लागुने और हमार उत्साहवर्धन ले हुने
1: बिल्कुल किले की ऊँकी और दिनेश चंद थपलियाल जी की चिट्ठी हमेशा अनंत हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक चिट्ठी किले नहीं है। जब तक चिट्ठी नहीं आ ली तब तक हमते चैन नहीं पड़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चिट्ठी में पढ़ू छो जागृति विहार नथनपुर देहरादून नेहरू ग्राम रोड दिनेश चंद्र थपलियाल जी की है ना। अभी हम बात करना चाह और देखा थपलियाल जी की चिट्ठियाँ ही तो थपलियाल जी भी हमारा सदा निकल लिखवार छन बुना छन की ग्राम जगत की पूरी कुटुम्बदारी और प्रस्तुत करता होते हैं दिनेश चंद थपलियाल की तरफ से सेवा सोली नमस्कार हमारी तरफ पटवामी टीवी के आपसे नमस्कार छ बुनाछन के आपसे निवेदन छ कि गोपीचंद की आवाज माँ रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो गीत सुना दियावल गड़ोली गीत पर दगड़े आप में लगनू चुक यू गीत नहीं मिली
0: नहीं मिले
1: क्या होलू
0: होई तो
1: कोई बात नहीं गोपीचंद जी की आवाज में नीचे तो क्या वे हम ये गीत हैं सुन ला केशव अनुरागी का स्वर्मा तो आवाज सुन रहा ये सुंदर सी गड़ोली गीत

0: श्रोताओं, अल्लाह हमून सुनो हीरा सिंह राणा को गायो भलो भलिया कुमाऊनी गीत, और उम्मीद करनो कि रेखी तिवारी जी के यो गीत भालो गुनल और हमार द्वार जो श्रोता छी उनके लिए यो गीत भालो लगुनल। श्रोताओं, अब माठू माठ कबीर बखत हुणवाल छो उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार, तो आवा जिटगढ़ी में सुनो उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परख विषय टूरिज्म की क्लास से शुरू की जाएंगी। और चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री धामी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने

0: उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की थीम समावेशिता, न्याय तक आसान पहुंच तथा न्यायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा भी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और नवीन तकनीकों को अपनाने की सोच ही कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। श्री जोशी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलन एवं कम से कम उपयोग का आग्रह करते हुए कहा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए नियमित मृदा परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं जैविक उपायों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित किया। श्री जोशी ने कहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है।
1: जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। कई प्रकार के असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग उससे हो रहे हैं। किसानों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में मैंने देहरादून से की थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की है। आज सुबह मैंने काशीपुर में किया है, कल मैं टिहरी जाऊंगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ज्यादा फसल लेने के उसमें, और दूसरा जो एक भ्रांति उनके अंदर है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो उपज कम होगी, एक भ्रांति किसानों के अंदर है, उसको दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है।
0: राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ जिले भ्रमण के दौरान कल मुनस्यारी में जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने राज्यपाल को मुनस्यारी, धारचूला एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों, सड़क संपर्क परियोजनाओं, आदि कैलाश यात्रा की व्यवस्थाओं, होमस्टे विकास कार्यक्रमों, सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन संवर्धन, वाइब्रेंट विलेज योजना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। जिले में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अल्मोड़ा के युवा सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए। कल शाम ऑपरेशन शेरावाली के दौरान वे तलाशी दल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में संतुलन बिगड़ने से वे गहरी खाई में गिर गए थे। साथ ही जवानों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनका निधन हो गया। अथर्बनी पांडेखोला निवासी और मूल रूप से बाड़ी बगवाली पोखर के रहने वाले बीरेश्वर गोस्वामी 5 असम रेजिमेंट में तैनात थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने देश सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल से प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से बूथ लेवल एजेंट्स को सहयोग करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 7 जुलाई तक 1 माह के समय में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के गणना फॉर्मों को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टिहरी के बादशाही थौल में स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में करीब 21 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल, मुख्य द्वार एवं आवासों का लोकार्पण किया। साथ ही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ की लागत से निर्मित आईटी लैब का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परक विषय टूरिज्म की क्लासें शुरू की जाएंगी।
3: विश्वविद्यालय का जो हमारा यहाँ पे एक हमने ट्रांजिस्ट हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है, दूसरा जो हमारे आवासीय कैंपस है वहाँ पे, चाहे पूर्व सचिव का आवास हो, हमारे रजिस्ट्रार का आवास हो, हमारे वित्त अधिकारी का आवास था, उसका भी आज यहाँ पे लोकार्पण किया गया। साथ में इंटर कॉलेज का भवन का भी हमने उद्घाटन किया है। और आज हमारे विधायक जी ने एक डिमांड की थी कि यहाँ पे बच्चे टूरिज्म करना चाहते हैं विश्वविद्यालय, तो इसी साल से हम वहाँ पे टूरिज्म की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं।
0: चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसबी, बीआरओ और खेल विभाग के सहयोग से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साइकिल रैली, पदयात्रा, जन जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिल के अधिकाधिक उपयोग का संकल्प लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रभारी एवं एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण तथा साइकिल उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
4: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आई हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजों से।
0: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लिया और उन्होंने आम जन से सप्ताह में कम एक दिन साइकिल का उपयोग करने की अपील की।
5: देव है, मैं खेलो इंडिया साइंस सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
6: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेतीकान से लोहाघाट गए थे। हमारा यह कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने अपने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का गहन परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परक विषय टूरिज्म की क्लास शुरू की जाएंगी। और चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: पापा लाइए 3,000।
8: क्यों भाई?
7: मेरी पॉकेट मनी।
8: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
7: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
8: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
7: अपना मोबाइल लाओ।
8: ले ले।
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
10: हर लेन देन अब है आसान।
11: उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों बाद एक बार फिर स्वागत छो आपक आपो बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। और आपका दगड़मा मीचू कुसुम बिलाखाल और मैं दगड़मा जी
12: रमन रावत।
11: वही बेणी, आज ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस छो, जो कि हर साल 7 जून के मनाई जाने।
12: बिल्कुल।
11: यो दिवसक मनानक उद्देश्य लोगन के सुरक्षित और साफ खाणक प्रति लोगन के जागरूक करण छो। और बेणी क्यों ना, खाण केवल हमर भूख नहीं मिटान, बल्कि यो क्यों हमर स्वास्थ्य और जीवनक आधार ले छू ने। तो खान साफ नहीं होल तो क्या होल कि गंभीर बीमारियों कारण ले बन जाने कबते कबते। खराब खाने के हूँ फूड पॉइजनिंग, दस्त, टाइफाइड और दोहर संक्रमण ले है जानी हमन के ने।
12: अच्छा, यू कब होंदू पता चे? जब हम बनी बनी का जो हमारा फूड ऐप

0: आजकल फोन पर डाउनलोड करें आछन, हम बोल दा कि हम खानो मंगौला फटाफट।
1: होए
0: अब सोचा कि जय खानो ते घर में बन में समय लग दू, वो 10 मिनट में आप तक कन के पहुँचनो छो, तो
1: होए
0: जाहिर सी बात छे कि कखी ना कखी वो बासी होलू पुरानू होलू, जहाँ से कि तबीयत भी खराब हुई
1: होई
0: सकती
1: बहनी,
0: है
1: घर
0: ना।
1: में तो हम कतु साफ सफेद अगर बनानू ना,
0: बिल्कुल
1: हम घर में खाना बनानू तो कतु बार हम हाथ के
0: हाँ
1: धोनू, साग पातन के धोनू, और हम अपन नानते नन के और हम खुद ले जो फल खानू उनके हम कतु बार धोनू वही बात खानू ने।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: बाजार बटी हम आज वो के हूँ फास्ट फूड, आज वो हमन के एक ले आदत पड़ गई ना, हम के करनू घर में अगर हमारे बनाना मन नहीं हो तो चट्टो फास्ट फूड बने मगे दिनों ने
0: हाँ। अब सोचा कि वहाँ मजो भुजी इस्तेमाल हुई चे, पता नहीं वह धुई चे कि नहीं चे। जन हम
1: होई
0: चाउमीन की बात अगर हम कर ला, तो चाउमीन माँ खास करी कि पत्ता गोभी डाल देनी है ना,
1: होई
0: है। अब वो माँ कीड़ा भी होंदू बहुत, इन केस भी होंदन, तो क्या होंदू कि हम जब लापरवाह होना तो तभी हमारी तबीयत भी खराब होंगी,
1: होई
0: है ना।
1: होई तो बहनी के छू ना, मतलब ये लास्ट में यही छू कि बासी और खराब खाना नहीं खाने चाहिए हम गने।
0: एक अलावा मैं एक और बात अपनी दगड़े की बात दगड़ी जोड़ने चालू,
1: होई
0: कि सोचता हूँ दुनिया में बहुत लोग इना भी छन ना जो ते रोज पोटगो भोरी के खानों ने मिल दो,
1: होई
0: है ना। कि लेकिन कदगा ही लोग खानों की बर्बादी कर दन, आपन देखी ओलू कदगई लुखू का घरों में घर का अग्नि रोटी धरी हूँ भात धरी हूँ जो बर्बाद हूँ,
1: होई
0: है ना। बिना यू सोचा कि खानू हमारी थकली तक आंद आंद कदगा लुखू की मेहनत से पहुँच दो,
1: होई ये तो
0: है ना।
1: सही कह
0: इले वे खानों की खोद करनू बहुत गलत बात छ। आप ब्यो बरतियों में देखा लोग
1: होई
0: थकलू भोरी की
1: होई
0: खानों लेंदन और मजा नहीं आयु, तो एक एक तरफा लड़के देंदन,
1: होई
0: है ना। तो वे परिवार को तो नुकसान छई छ भाई, पैसों को नुकसान तो छई छ,
1: होई
0: पर वहां से ज्यादा अन्न को नुकसान छ। अब आप सोचा कि रुपया हम्मा बहुत छन,
1: होई
0: और अगर अन्न ही नहीं होलू तो रुपया तो खान नहीं छन, हमन खान तो नहीं छे ना। तो खाद्य सुरक्षा में यू भी बहुत जरूरी छे कि हम अपने खान पीने की चीजों को कन की सुरक्षा कर ला, और वे अन्न तय बचे की रख ला। अगर ब्योकारी जुमा
1: होई
0: हमारा घर माँ खानू बच जा दे, तो हम जरूरतमंद लोग होते हैं दे सकना। दुनिया में बहुत इना लोग छन श्रोताओ जो कि खानों तय तरसना लेंदा ना, और हम बोलना
1: होई
0: कि मजा नहीं आनो छे।
1: होई बहनी तबे तो कुनी ने उतु को लियो थाली में, व्यर्थ न जाओ नाली में ना,
0: बिल्कुल
1: कि लेकिन हम ब्याह काज में क्या करनो, हमका तो खाना बर्बाद कर दिनो ना। हम ये नहीं सोचन कि जनून ब्याह काम कर रहा हो तो उनका तो डबल खर्च कर रही है हमने।
0: हाँ बिल्कुल
1: हमन हमेशा कोशिश करना चाहिए ना उनर जाग में अबू के ठाड़ करना चाहिए ना, कि
0: हाँ
1: अगर हमारे डबल या लगू लगन मतलब लक्षी तो हम उन कतु कसक हो चाहिए हमारे कह
0: बिल्कुल
1: रहे हैं
0: बिल्कुल
1: खाने।
0: बिल्कुल। तो
1: तो बहन
0: खाद्य की जो सुरक्षा तक वे
1: होई
0: सकती होता हूँ जब हम ये को महत्व समझला।
1: होई
0: अगर हमारा जीवन में ये बात को महत्व हो लो, तो हम सुरक्षा भी कर ला, सब धानों को ध्यान भी रख ला। मित्र तो भैया बहुत ख्याल रख दो कि एक रोटी भी फालतू नहीं बनो, बर्बाद नहीं जाओ। अगर बन गई तो पहली हुई खान,
1: होई
0: है ना, जहाँ से कि खानों को नुकसान नहीं हो, और बहुत ही मेहनत करने का बाद हम तयों अन्न मिल दो,
1: होई
0: है ना। तो ये तो बहुत ध्यान से
1: होई
0: रखना दगड़िया। छुई बत तो हमारी लगनी रेली, पर चिट्ठी रह जाली फिर ना।
1: होई
0: तो अगली चिट्ठी में पढ़ू छो यू अं श्रेया थपलियाल जोगी वाला देहरादून बिटी के लिखनी छा ना, कि ग्राम जगत की कुटुंब दुरी तय सेवा सौंधी। तो आपको तय भी नमस्कार, और यू बुनी छन कि धूम सिंह को गयूँ तीले धारू गीत सुने जावल।
1: होई बहनी, यह हमारे पास छू तो सुने दिनों ने।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता लहमन सुनो धूम सिंह को गायो भलो भलिया गीत, आशा करनो आप सबन के गीत भला गुनल ने।
1: और श्रोताओं आशा करना छा कि जो कार्यक्रम छो आज को आप लोग खुद पसंद आया होलू, और हम यू भी उम्मीद करना छा कि अगली दफा आपका और पत्र आला जैते जहाँ से कि हम ये कार्यक्रम ते और भी सुंदर बनाए सका। तो ये का दगड़ा ही आज का कार्यक्रम ते यखमी बटोल ने रमन रावत
0: और मी कुसुम पिलखवाल के
1: आज्ञा दिया।
0: नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना अवस्थी। पहली मुख्य समाचार। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ का वार्षिक सम्मेलन को आयोजन वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाल प्रत्येक नागरिक तय त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुँचाण सरकार की प्राथमिकता छ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों तय बेहतर बनौने का वास्ता सभी शिक्षकों तय गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। चंपावत में साइकिल पखवाड़ा का तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन वे पर्यावरण संरक्षण ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को संदेश दिनी। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बॉयल की प्रत्येक नागरिक तय त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाणु

0: सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल छ। ओन बॉयल की न्याय व्यवस्था ते अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने सुशासन की मूल भावना छ। ऊन आज देहरादून का एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ को वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग ते संबोधित करी। मुख्यमंत्री बॉयल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश की न्यायिक व्यवस्था ते आधुनिक और तकनीक सक्षम बढ़ाने का वास्ता अनेक कदम उठाए गई। यहाँ से प्रेरित हुए कि राज्य सरकार भी न्यायालयों को आधारभूत ढांचा ते मजबूत कन और व्यवस्थाओं ते सुदृढ़ बढ़ाने का वास्ता लगातार कार्य कने छ।
1: न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक ओर अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
0: ये अवसर में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन के कल्याण निधि का वास्ता 5 करोड़ रुपयों की धनराशि देने की घोषणा भी करी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों तय बेहतर बनाने का वास्ता सभी शिक्षकों तय गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। ओन बॉयल के विद्यार्थियों तय बेहतर भविष्य का वास्ता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आवश्यक छ। टिहरी जिला का बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. रावत ने महाविद्यालय का प्राचार्य और शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को बोल। उन इस बात पर जोर दिनी कि शिक्षण संस्थानों को उद्देश्य विद्यार्थियों ते बेहतर शिक्षा प्रदान करी ते तवे विभिन्न प्रतिस्पर्धी और अन्य क्षेत्रों में सफल बनाणो वयू चेंदु। ये अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने लगभग 21 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल, मुख्य द्वार और आवासों को लोकार्पण करी। ये का अलावा उन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार आईटी लैब को भी उद्घाटन करी। डॉ. रावत ने बताई कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ये वर्ष से रोजगार परक विषय पर्यटन अध्ययन की कक्षा शुरू की जाएगी, जैसे विद्यार्थियों ते रोजगार को बेहतर अवसर मिल सकलू। देहरादून, मसूरी और चारधाम यात्रा का दौरान यातायात व्यवस्था तय सुचारू बनाए रखना का वास्ता पुलिस ने व्यापक प्रबंधन कराया छ। देहरादून का सर्किल अधिकारी ट्रैफिक अंकित कंडारिन बताई कि बढ़दू यातायात दबाव तय देखते हुए पूरा देहरादून तय 4 सुपर जोन में विभाजित किए गए।
2: कि समर वेकेशन है, ऊपर से वीकेंड का टाइम भी है, तो पहले वीकेंड में भी देखा गया कि जब से छुट्टियां पड़ी हैं तो मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में देहरादून और मसूरी का ट्रैफिक प्लस चारधाम का ट्रैफिक को देखते हुए पूरे देहरादून को हमने 4 सुपर जोन, 10 जोन तथा 19 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें सभी जोन सुपर जोन पर सीओज, इंस्पेक्टर्स और एसआई प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं तथा सभी मुख्य चौराहों, तिराहों तथा मुख्य कटों पर हमारे द्वारा ड्यूटीज को लगाया गया है, जिसमें सुबह तथा शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं और तथा पार्किंग व्यवस्था ही तो पार्किंग स्थल चेक किए गए हैं तथा भीड़ के दबाव देखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत डायवर्जन मार्ग भी देखे गए हैं।
0: श्री कंडारी ने पर्यटकों और आम नागरिकों से अपील करी कि वो अपना गाड़ी तय निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करी और यातायात नियमों को पालन करी। उन बताई कि यातायात के निगरानी और प्रबंधक का वास्ता देहरादून तथा मसूरी में ड्रोन टीमों तय भी तैनात किए गए, जैसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा सके।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: चंपावत जिला में साइकिल पखवाड़ा का तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन हुए। ये दौरान एसएसबी, बीआरओ और खेल विभाग का सहयोग से लोगों ते पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का वास्ता प्रेरित किए गए। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का दौरान साइकिल रैली, पदयात्रा, जन जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करी। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिल का अधिकाधिक उपयोग को संकल्प लिनी। स्पोर्ट्स स्टेडियम का प्रभारी और एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणन बॉयल की संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का माध्यम से लोगों तय पर्यावरण संरक्षण और साइकिल उपयोग का प्रति जागरूक किए जानो छ।
4: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आए हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजों से।
0: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लेने और उन आम जनसी सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल को उपयोग करने की अपील करी।
5: मैं यशदेव है, मैं खेलो इंडिया साइंस सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
6: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेती कान से लोहाघाट गए थे। हमारा यह कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर को आयोजन हुए। कार्यक्रम में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाद्य व्यवसाय से जुड़िया संचालकों तय खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दिए गए। ये दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग का अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गीन बॉयल की सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन लोगों का स्वास्थ्य लय बेहद जरूरी छ। उन खाद्य पदार्थों को निर्माण, भंडारण और वितरण में निर्धारित स्वच्छता मानकों को पालन करन पर जोर देनी।
7: ऑफिसर्स हैं, सबको ये बताया गया है कि सभी को हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाए और वर्कशॉप के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं सभी को हाइजेनिक खाना परोसें, क्योंकि खाना ही जो है आपके दवाई का काम भी करता है और इसको अगर जब तक शुद्ध खाना नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी जो है आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमने एक संदेश इनको भी दिया है कि आप लोग जो भी परोसें वो स्वच्छ और सही परोसें।
0: कार्यक्रम में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से स्वच्छ वातावरण में भोजन तैयार करी ग्राहकों तय उपलब्ध कराने की अपील भी करी। ये दौरान विभाग का अधिकारियों ने स्पष्ट करी कि खाद्य सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करने वालों प्रतिष्ठानों का खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाली। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने को आग्रह भी करी। रुद्रप्रयाग जिला में मॉनसून का दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा का बाटा में संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटण का वास्ता प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाओं करी छ। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताई कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तैनात छ और कैमरा का माध्यम से लगातार निगरानी होनी छ। अंत में मुख्य समाचार एकदम फिर। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ का वार्षिक सम्मेलन को आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बॉयल प्रत्येक नागरिक तय त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाउन सरकार की प्राथमिकता छ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों तय बेहतर बनाने का वास्ता सभी शिक्षकों तय गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। चंपावत में साइकिल पखवाड़ा का तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन वे पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को संदेश दिनी। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दिए गए। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भाइयों और बहनों को भैया विकास चमोली का नमस्कार। साथियों, आज है 7 जून, और क्या आप जानते हैं कि आज का दिन कितना खास है हमारे जीवन में, हमारे रसोई के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए? जी हाँ, आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हमारा छोटा सा कदम साथियों हमें और हमारे परिवार को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। साथियों, अक्सर हम बाहर खाने के लिए निकलते हैं और हम स्वाद के पीछे साथियों भागते हैं। कभी पकौड़ी, समोसे, चाउमीन, मोमोज, ये सब होटल में हम खूब खाते हैं ना? लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हमारी थाली में है वो कितना सुरक्षित है? साथियों, आंकड़े बताते हैं कि दूषित खाने और पीने से लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। हर साल हम देखते हैं कि कितने ही लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये वायरस और केमिकल से भरा खाना सिर्फ हमारा पेट खराब नहीं करते, बल्कि ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बिगाड़ देते हैं। इसलिए खाने के प्रति कुछ सावधानियां हैं जिनका हम ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सबसे पहले सफाई पर हमें ध्यान देना है, हाथों को अच्छे से धोने के बाद ही हमें खाना बनाना है, खाना खाते समय भी हमने हाथों की अच्छे से सफाई रखनी है। दूसरा साथियों, जो कच्चा खाना है और जो पका हुआ खाना है उसको हमने अलग रखना है। जैसे कई बार हम चाकू का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हमने अलग रखना है। कई बार कच्चे भोजन से भी कई सारे बैक्टीरिया हमारे पके हुए खाने तक पहुंच जाते हैं। तीसरा साथियों, सही तरह से हम अपने जो भोजन है उसको हमें पकाना है। सही टेम्परेचर में अगर हम उसको पकाते हैं तो उससे भी सुरक्षित भोजन हमें प्रदान होता है। तो साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर अधिक विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने आमंत्रित किया है गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र रावत को। तो आइए करते हैं राजेंद्र रावत साहब से बातचीत। सबसे पहले रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि जगत में।
1: बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरी तरफ से विश्व खाद्य दिवस पर शुभकामनाएं और बधाइयां।
0: रावत जी, जैसे आज हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं तो सबसे पहले यही जानेंगे कि आज का दिन मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई?
1: देखिए, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी व्यवस्था का एक दिन निश्चित किया जाता है और ये वर्ल्ड फूड डे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, उनके द्वारा बनाया गया है। ये 2018 से हमने, इसलिए कि आम आदमी के प्रति जो भूल जाता है, जो जागरूकता उसमें होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हनुमान जी को बल याद दिलाने वाली बात है। आदमी अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरा जो खान पान है वो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी एक बनाया गया है और ये दिवस भी स्पेशली इसीलिए मनाया जाता है।
0: अच्छा, आहार हमें और सबको मिलता रहे,
1: बेसिकली स्वस्थ आहार जीवन का आधार। अगर आपका भोजन सही है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप हर फील्ड में अच्छा काम करते हैं। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो देखिए आपको परेशानियां होंगी, आप बीमार होंगे। अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपका मेडिसिन का बजट भी कम होगा, आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। इसीलिए विभाग ने, देखिए ये विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ पहले अटैच हुआ करता था। 2011 के बाद, 5 अगस्त 2011 के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक पैरेलल एक नया डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके, या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया गया। इसलिए बनाया गया है ताकि हर आदमी को जागरूक किया जा सके, विभाग की अपनी एक जो है छवि बने, विभाग अपना एक कार्य कर सके, हर आदमी को एक को मोटिवेट कर सके, उस आदमी को जागरूक कर सके। ये बेसिकली विभाग का कार्य है।
0: तो आज के दिन कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके?
1: हाँ बिल्कुल। देखिए, हम आम आदमी को ये कहते हैं, खाने से सबसे ज्यादा बीमारी होने का, 200 से ज्यादा बीमारियां होने का एक डर रहता है, या 200 से ज्यादा बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। हम इस दिन एक जन जागरूकता, आम आदमी, आम उपभोक्ता को ये कहते हैं, क्या सामान खरीदें, क्या नहीं खरीदें, बासी भोजन खाएं या ना खाएं, कितने टेम्परेचर पे खाना को खाने को रखें, ये सारी बातें, बेसिक चीजें हम लोग एक अपने एक गोष्ठियां कर करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, ताकि आम आदमी स्वस्थ रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वस्थ आहार और जीवन का आधार, अगर आप स्वस्थ हैं तो हर फील्ड में आप परफेक्ट हैं।
0: जी रावत साहब, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिब्बा बंद फूड है इसका खूब चलन है, और आजकल के युवाओं की बात करें तो वो सब इसको पसंद करते हैं, किस तरह के मानक इन सब चीजों के लिए निर्धारित किए जाते हैं?
1: देखिए, आज के समय में मैं आपकी बात से आगे बढ़ाता हूं कि समय किसी के पास नहीं है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर आदमी व्यस्त है, घर पे खाना बनाने को कोई तैयार नहीं है। हर कोई, देखिए, पिज्जा बर्गर ये सब ऑनलाइन फूडिंग के जो है टेस्ट ले रहे हैं लोग, लेकिन देखिए हर चीज की एक

0: कि हम देखा देखी एक दूसरे के जो है पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रेश खाना कोई पसंद नहीं कर रहा है और जो है बर्गर पिज्जा ये फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बातें हम ही नहीं, मेडिकल साइंस भी कह चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप एंजॉय करें, टेस्ट लें, लेकिन अपने साथ अपने पारंपरिक भोजन के प्रति अपनी इच्छाएं रखें, अपने पारंपरिक भोजन का उपभोग करें, आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात की मैं आपको अश्योर करता हूं।
1: जी निश्चित तौर पे जो ये पैकेट वाले फूड हैं कहीं ना कहीं इसने हमारे स्वास्थ्य को तो बिगाड़ा है। रावत साहब, जैसे हम खाद्य सुरक्षा के आयामों की भी बात करते हैं कि उपलब्धता हो, पहुंच हो, उपयोग हो, स्थिरता रहे, भविष्य तक हमारे सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में इस तरह की सामग्री मिलती रहे,
0: जी,
1: तो इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए जाते हैं?
0: देखिए विभाग हमेशा अब दो तरीके से कार्रवाई करता है। एक तो आम उपभोक्ता को जागरूक करता है, जो खाद्य कारोबार करता है इस सामान को बेचता है, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम उनको ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाइयां भी होंगी। आपने समय समय पर देखा होगा देहरादून में हमने इतना दूध और पनीर की जो है
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: डिस्ट्रॉय करवाया,
1: मिलावटी।
0: इतनी मिलावटी जो संदेहास्पद होता है बाहर से आ रहा है उसके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं। देखिए मांग और आपूर्ति के बीच का जो गैप है वो इस सब जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों की जननी है। हमारा जो मांग बढ़ जा रही है, देखिए समय के साथ आप लोगों ने लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया,
1: बिल्कुल।
0: मैं अन्यथा ना लें लोग मेरी बात को, लेकिन गाय की जगह लोगों ने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। वो एक शौक है आपका, एक इंटरेस्ट है, लेकिन आप गाय पालिए, अच्छा दूध मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए हमारे यहाँ कहते थे गिर गाय और जो बद्री गाय का दूध और घी है वो अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक है, वो एक
1: जी
0: दवाई का काम करता है, लेकिन कोई उसी को पालना कोई चाहता नहीं है। हर कोई जो है चाहता है कि मैं एक रात में जो है सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लूं, तो ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे संस्कृति का एक भाग है भोजन, एक ऐसा हुआ है, देखिए बच्चे के अन्न प्राशन से लेकर के और पिंडदान तक,
1: जी
0: देखिए बच्चे को सबसे पहले दूध और खीर खिलाई जाती है, अन्न प्राशन होता है, संस्कारों में हमारे, और अंतिम संस्कार पिंडदान तक है, वहां भी हमें जो है चावल का या मकई के आटे का पिंड बना के भेजते हैं। तो
1: जी
0: सोचिए उस भोजन की कितनी महत्ता है, इस बात को आप इसी बात से लगा सकते हैं।
1: जी निश्चित तौर पे हर व्यक्ति की जरूरत है अन्न, और किसान इतनी मेहनत से उसको उगाता है। अच्छा रावत साहब, जैसे अभी आपने बताया कि त्योहारी सीजन की बात करें या तमाम हम अवसरों में देखते हैं कि जो इस तरह की मिलावटें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, सरकार इसमें लगातार काम भी कर रही है, तो किस समय एक आम उपभोक्ता को सावधानियों का पालन करना चाहिए?
0: देखिए मेरा आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से, खास करके किसान बंधुओं से, या जो भी मेरी आवाज जिन तक मेरी पहुंच रही है उनसे कहना है, त्योहार हो चाहे कोई भी सीजन हो, आप खाना 24 घंटे आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप 3 टाइम का खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, आप हर समय सावधान रहें, आप अपने शरीर के प्रति उतने अलर्ट रहें। देखिए आप किसी गाड़ी में अगर गलत तेल डालेंगे तो थोड़ी देर में गाड़ी बंद हो जाएगी। आपके शरीर में भी स्वीट पॉइजन, ये धीमा जहर जिसे कहते हैं, स्लो पॉइजन कह सकते हैं, ये इस तरीके के खाद्य पदार्थ अगर मार्केट में मिल रहे हैं, अगर आपको संदेहास्पद लगता है तो आप विभाग को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप मार्केट में बंद डिब्बा सामान खरीद रहे हैं उसमें डेट ऑफ पैकिंग देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए, आप किस खाद्य कारोबारकर्ता से वो सामान खरीद रहे हैं उससे एक बिल जरूर लीजिए कि कल की डेट में, ये कह करके डिनाई ना कर दे कि मेरे यहाँ से नहीं खरीदा गया, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे, उसने कहाँ से खरीदा उसके खिलाफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले जागरूक आपको होना, देखिए सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी कार्रवाइयां करते हैं लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम भी बाउंडेड हैं, हम भी एक लिमिट तक ही कार्रवाई कर सकते हैं। मानव संसाधन जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से हमारे पास विभागीय उस हिसाब से अभी है नहीं, नया डिपार्टमेंट है, कार्रवाइयां जारी हैं, विभाग अपने कार्रवाइयां करे, लेकिन फिर भी हर चीज को सरकार के भरोसे छोड़ना, अपने स्वास्थ्य को सरकार के भरोसे छोड़ना बहुत उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे अश्योर कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपको संदेह है कहीं भी, हमारी एक मोबाइल टेस्टिंग वैन है जो अभी 4 धाम यात्रा पे चल रही है, अभी कुछ दिन बाद देहरादून में भी चलेगी, अगर आप उससे टेस्ट करवाना चाहते हैं या अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है,
1: जी जी जी
0: वो है 1-800-180-4246। आप इस
1: जी
0: पर भी जो है किसी भी समय अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आपको कोई संदेह है, कोई सामान लेके आ रहा है, दूसरा कोई फेरी वाला आपके पास आता है
1: जी
0: कभी, जैसे त्योहार में होली दिवाली पे अक्सर देखो आपने वो कजरी हुआ, मावा हुआ, पनीर हुआ, ये बेच के और
1: जी
0: भाग जाते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अपने मोहल्ले की दुकान है जिसपे फूड सेफ्टी का लाइसेंस टंगा हुआ है उसी से ही सामान खरीदें, ताकि अगर कल कोई अनहोनी हो भी जाए तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
1: जी निश्चित तौर पे अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, इसीलिए आज तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि आम उपभोक्ता जागरूक हो सके। राजेंद्र रावत साहब, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत खाद्यान्न सामग्री को लेकर आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।

तो किसान साथियों, ये थे राजेंद्र रावत जी। काफ़ी विस्तार से रावत जी ने बताया कि किस तरह से जो खाद्यान्न सामग्री हैं उनके प्रति हमने सचेत रहना है। डब्बा बंद जो फूड है उससे अच्छा है कि हम घर का बना हुआ ताज़ा खाएं और स्वस्थ रहें। जी हाँ, बिल्कुल, कहा जाता है कि स्वच्छ भोजन स्वस्थ जीवन का आधार है। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में अब समय है आपके मनोरंजन का। ये सुनाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
3: है
2: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे किसान साथी खेतीबाड़ी के कामों में व्यस्त हैं। जी हाँ, क्योंकि आने वाला समय खरीफ का है और मुख्य फसल जो हमारी धान है उसकी बिजाई हमने करनी है, नर्सरी हमने डालनी है, तो तमाम काम हमारे किसानों के पास हैं। लेकिन साथियों, खेत की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले साथियों, हमने प्रबंधन करना है खरपतवारों का। जी साथियों, ये अनावश्यक खरपतवार अगर इनका प्रबंधन हमने सही समय पर नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी फसलों को ये प्रभावित करते हैं। जो पोषक तत्व हमारी फसलों को मिलने चाहिए वो पोषक तत्व ये खरपतवार ले लेते हैं और इससे जो हमारी फसल है उनकी अच्छे से बढ़ावार नहीं हो पाती। तीसरा साथियों, मिट्टी चढ़ाने का काम भी अभी हमने मेड़ों में कर लेना है क्योंकि आने वाला समय बरसात का होने वाला है। और अगर अभी से हमने मेड़ों का प्रबंधन अच्छे ढंग से किया है, मेड़ों से खरपतवार साफ करके हमने मिट्टी चढ़ा दी है, तो ये मेड़ हमारी टाइट हो जाएंगी और आने वाले समय पर खेत में पानी भी रुका रहेगा और साथियों इससे जो हमारी खेत है वो भी व्यवस्थित रहेगी क्योंकि कई खरपतवार इन्हीं मेड़ों से हमारी फसलों में चले जाते हैं। कई हमारे किसान साथियों हमने देखे हैं कि जो हमारे किसान साथी हैं बाज़ार से रसायन लेकर आते हैं और उनसे भी खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं। अब धान की रोपाई से पहले हम देख रहे हैं क्योंकि बरसात हुई है तो खूब खरपतवार हमारे खेतों में जमे हैं। हमारे किसान साथी अब रसायन लेकर आएंगे और उनका ही छिड़काव कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा रसायनों के प्रयोग से आप बचें। और अगर आपको किसी कारणवश से इन रसायनों का प्रयोग भी करना है तो कृषि वैज्ञानिकों की आप सलाह लें, कितनी मात्रा में ये खरपतवार आपने खेत में डालने हैं, ये रसायन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए डालने हैं, इसका भी ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। जो साथियों, दवा का डब्बा है उसमें लिखा भी रहता है और आप कृषि वैज्ञानिकों से सलाह भी ले सकते हैं कि कितनी मात्रा हमने पानी की डालनी है और कितनी हमने दवा की डालनी है। अनावश्यक साथियों, ये रसायन हमारी मृदा को दूषित करते हैं। साथियों, ये जो गर्मी का समय है इस समय हमारे किसान साथी गहरी जुताई भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो बीज हैं या जो खरपतवारों की जड़ें हैं वो धूप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाती हैं, इससे भी खरपतवारों की समस्या कम होती है। साथ ही कई सारे जो शत्रु कीट हैं साथियों, ये भी धूप के संपर्क में आते हैं और इससे भी हम आने वाले समय में अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तीसरा साथियों, जुताई भी हम कर सकते हैं अपनी सारी खेतों की, जहाँ पर हमने रोपाई करनी है उनकी अगर एक हल्की जुताई हम इस समय कर दें तो उससे भी आने वाले समय में खरपतवार काफ़ी हद तक नष्ट किए जा सकते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए साथियों, जो हरी खाद है इसकी अगर हम बुआई करेंगे तो ऐसे में भी खाली खेत में हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खरपतवार उग जाते हैं, तो ऐसे में हरी खाद अगर आप बोते हैं तो इससे खेत को खाद भी मिलता है और खरपतवारों से भी काफ़ी हद तक आपके खेत को मुक्ति मिल जाती है। मल्चिंग भी साथियों एक विकल्प है, अगर आप मल्चिंग करते हैं इसके लिए तो आप शीट भी आ रही हैं, पुआल भी हमारे किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मल्चिंग के माध्यम से भी आप काफ़ी हद तक खरपतवारों से मुक्ति पा सकते हैं। अब जैसे हमारे बाग हैं, हम थावलों में अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये खरपतवार उगाते हैं और इन्हीं खरपतवारों से कई कीट ऐसे होते हैं, कई रोग ऐसे होते हैं जो हमारे बागों को प्रभावित करते हैं, तो आप मल्चिंग कर सकते हैं और अपने बागों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में अब समय है आपके मनोरंजन का, ये सुनाते हैं कार्यक्रम की ये रागिणी।

किसान साथियों, अब धीरे धीरे हमारा समय हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का। जी हाँ, लेकिन जाते जाते हम अपने किसान साथियों को आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप खेती किसानी कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को भी रसायनों से मुक्त अन्न मिल सके और हम भी स्वस्थ रहें। तो आप साथियों हमें पत्र निरंतर भेजते रहें, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा और आप सीधे jagatkrishi@gmail.com पर अपने पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ भैया विकास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। देहरादून उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के भल बढ़ाक लीजिए सभी शिक्षकों के गंभीरता काम करनक लीजिए को। चंपावतम साइकिल पखवाड़क तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाक दी गौ संदेश। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसक मौके पर हरिद्वारम खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविरम खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों की जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकताओं में शामिल छू। उन्होंने कहो कि न्याय व्यवस्था के ज्यादा समावेशी, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बना सुशासनक मूल भावना छू। वो आज देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय में हई उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग के संबोधित कर छी। मुख्यमंत्री कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देशक न्यायिक व्यवस्था के आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाने लीजिए बहुत कदम उठाई जा रही। यह प्रेरित है राज्य सरकार ले न्यायालयों के आधारभूत ढांचे के मजबूतकरण और व्यवस्थाओं के भल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे।
2: आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक ओर अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
1: यह मौके पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड जज एसोसिएशन कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए धनराशि देने की घोषणा ले करी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता और परिणामों के आय भल बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों के गंभीरता काम करने के लिए को। उन्होंने कहो कि विद्यार्थियों का भल भविष्य लीजिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जान जरूरी छू। टिहरी जिला बादशाही थौलक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में हई कार्यक्रम डॉक्टर रावतल महाविद्यालयक प्राचार्य और शिक्षकों हेते शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए को। उन्होंने यह बात पर जोर दियो कि शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य विद्यार्थियों के भल शिक्षा दिबेर उनके विभिन्न प्रतिस्पर्धी और अन्य क्षेत्रों में सफल बनान होना चाहिए। यह मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत बनी ट्रांजिट हॉस्टल, मुख्य द्वार और आवासों का लोकार्पण करो। यह के अलावा उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ रुपए की लागत तैयार IT लैब के उद्घाटन करो। डॉक्टर रावतल बता कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में यही साल बटी रोजगार परक विषय पर्यटन अध्ययनक कक्षाएं शुरू करी जाए, जैल विद्यार्थियों के रोजगारक बेहतर मौक मिल सको। देहरादून, मसूरी और चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिसल व्यापक प्रबंध कर रही। देहरादूनक सर्किल अधिकारी ट्रैफिक अंकित कंडारिल बता कि बढ़ते यातायात दबाव के देखते हुए पूरे देहरादून के 4 सुपर जोनम बांटी जा रही।
3: से ऊपर से वीकेंड का टाइम भी है, तो पहले वीकेंड में भी देखा गया कि जब से छुट्टियां पड़ी हैं तो मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में देहरादून और मसूरी का ट्रैफिक प्लस चारधाम का ट्रैफिक को देखते हुए पूरे देहरादून को हमने 4 सुपर जोन, 10 जोन तथा 19 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें सभी जोन सुपर जोन पर COs, इंस्पेक्टर्स और SIs प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं तथा सभी मुख्य चौराहों, तिराहों तथा मुख्य कटों पर हमारे द्वारा ड्यूटीज को लगाया गया है, जिसमें सुबह तथा शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं और तथा पार्किंग व्यवस्था हेतु पार्किंग स्थल चेक किए तथा भीड़ के दबाव देखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत डायवर्जन मार्ग भी देखे गए हैं।
1: श्री कंडारिल पर्यटकों और आम नागरिकों हेते अपील करी कि अपन गाड़ियों के सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ठाड़ करो और यातायात नियमों का पालन करो। उन्होंने बता कि यातायातक निगरानी और प्रबंधनक लिजी देहरादून और मसूरी ड्रोन टीमों के लिए तैनात करी जा रो जेल भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लगातार नजर रखी जा सको।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपू लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़क तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन करी गो। एक दौरान SSB BRO और खेल विभागक सहयोग लोगों के पर्यावरण संरक्षण ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना के लिए प्रेरित करी गो। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम हई कार्यक्रम दौरान साइकिल रैली पदयात्रा जनजागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करी गई। प्रतिभागियों पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिलक ज्यादा है ज्यादा उपयोग करना संकल्प लियो। स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रभारी और एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणाल को की संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम माध्यमल मैसू के पर्यावरण संरक्षण और साइकिलक इस्तेमाल लिजी जागरूक करी जा रो।
5: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आई हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से स्कूलों से कॉलेजों से।
1: कार्यक्रम में बहुत संख्या में स्थानीय लोगों और नांतिनुल भाग लियो और उन्होंने आम जनों हेते हफ्तम कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करने का अपील करी।
6: मैं खेलो इंडिया साइकिल सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
7: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेती कान से लोहाघाट गए थे। हमारा यह कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसक मौके पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन करी गो। कार्यक्रम में होटल रेस्टोरेंट ढाबा और खाद्य व्यवसाय हेबे जुड़ी संचालकों के खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों की जानकारी दी गई। एक दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गील को की सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त भोजन मैसू के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी छू। उन्होंने खाद्य पदार्थों के निर्माण भंडारण और वितरण निर्धारित सफाई नियमों के पालन करण पर जोर दियो।
8: सभी ऑफिसर्स हैं, सबको ये बताया गया है कि सभी को हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाए और वर्कशॉप के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं सभी को हाइजेनिक खाना परोसें, क्योंकि खाना ही जो है आपके दवाई का काम भी करता है और इसको अगर जब तक शुद्ध खाना नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी जो है आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमने एक संदेश इनको भी दिया है कि आप लोग जो भी परोसें वो स्वच्छ और सही परोसें।
1: कार्यक्रम होटल और रेस्टोरेंट संचालकों हित साफ वातावरण में खा तैयार कर बेर ग्राहकों के उपलब्ध कराने का अपील करी गई। विभागक अधिकारियों ने स्पष्ट करो कि खाद्य सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करी जाए। एक दगड़ सभी खाद्य कारोबारियों हित खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य रूपल कराणक ले आग्रह कर रो। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन घटनाओं हेते निपटने के लिए प्रशासनल व्यापक व्यवस्थाएं कर रही। जिलाधिकारी विशाल मिश्राल बता कि संवेदनशील इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधनक टीम तैनात छी और कैमरों के माध्यम लगातार निगरानी करी जा रही।
9: हमारी टीमें तैनात है, कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। और जो डेंजर जोन है वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर्स भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है।
1: प्रशासनल यात्रियों हते मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करण और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा करने की अपील कर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के भल बनाना लीजी सभी शिक्षकों के गंभीरताल काम करना लीजी को चंपावतम साइकिल पखवाड़क तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित पर्यावरण संरक्षण ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाणक दी गो संदेश और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसक मौके पर हरिद्वारम खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविरम खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों की जानकारी दी गई। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह अंक समाप्त हो। नमस्कार।
0: कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। खूबसूरत फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत सोना मोहपात्र और अरमान मलिक की आवाज़ों में। संगीत अमाल मलिक का है।

0: मिकी वायरस फिल्म से आप सुन रहे थे गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
0: कबीर सिंह फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत अरमान मलिक की आवाज में। विशाल मिश्रा का संगीत है, गीतकार हैं इरशाद कामिल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। काव्यांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राजकुमारी की काव्य पाठ।
1: आज मैं देश के प्रति आप सभी के समक्ष एक गीत रखती हूँ। हर

0: जो मैं सोचती थी कभी आज वो हो गया।
1: काव्यांजलि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजकुमारी के काव्य पाठ। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑन हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट्स। द इंटरव्यूअर इज निहारिका भुवानिया।
3: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
4: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
5: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के

0: 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है
1: जी।
0: 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई

होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्म

0: डायबिटीज में भी इसकी काफी
1: बिल्कुल
0: उपलब्धि है
1: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं। एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
0: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के

0: ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड 19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं,

0: या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए। और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज
1: जी
0: की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो।
1: मौजूद हो।
0: इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण। ये आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: आसान
1: नहीं।
0: लक्ष्य नहीं है।
1: जी
0: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल
1: डिजिटल
0: सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on

0: 8909-4044।
1: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरकार के 12 साल। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने

0: 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया च्वालिन्स्का को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
3: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jaishankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursion, Kalingpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy, as well as generate employment opportunities. Ms. Paul said strict measures will be taken to improve urban infrastructure and cleanliness. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and the government of West Bengal will sign a memorandum of understanding tomorrow for the implementation of the ABPMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, and West Bengal Chief Minister, Suvendu Adhikari. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said the Narendra Modi government has transformed India in the past 12 years into an aspirational nation driven by opportunity, innovation and self-belief. Speaking to media, Dr. Singh said governance reforms, technological democratization and citizen-centric policies have fundamentally changed the way people of the country view their future prospects. He said India's space economy, currently valued at nearly $9 billion, is expected to grow to about $45 billion over the next 7 to 8 years. He added that the startup ecosystem has expanded from around 400 startups in 2014 to more than 2.3 lakh at present, generating nearly 25 lakh jobs. Lok Sabha Speaker Om Birla today asserted that the vision of Viksit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation building must progress hand in hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility and active citizen engagement. Highlighting the role of the youth in shaping the future, Mr. Birla stated that educated, skilled and technologically enabled young people constitute the greatest strength of Viksit Bharat 2047. He urged the younger generation to embrace innovation, artificial intelligence and emerging technologies to position India as a global leader. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and entire northeast Bay of Bengal today. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram and some parts of Tripura, Assam and Arunachal Pradesh today. It predicted heavy to very heavy rainfall with isolated at places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahi, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Meanwhile, various parts of the national capital received light to moderate rainfall this evening. The rainfall brought relief to the residents of the city from the hot and humid weather. In Maharashtra, monsoon showers reached parts of Ratnagiri district today. Heavy

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी, लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह के पहले चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति जो सामान्य पत्रकार हो अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए समाचार कक्ष में आ जाए तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were.
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
5: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की। सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुँचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
7: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था। बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
8: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
9: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
8: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
9: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
10: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हम दर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत अपनों की

0: बर्दाश्त और मदद की जानकारियाँ हर पीढ़ी तक पहुँचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
1: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे छीक चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
0: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ।
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक

0: ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
1: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के तखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविन डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआत ही क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण ही। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया, पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
2: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था, क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।

0: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
2: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
0: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुँचने में या लोगों तक पहुँचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
0: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है, तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम बी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एन सी एच कृष्णमाचार्य के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनल बद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगन अर्ली। His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M. S. N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N. C. H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi

0: श्री एम एस एन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मृदु स्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृतवार्षिणी रागम आदितालम।

0: रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Adi Talam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वेर इन वी प्रेजेंटेड अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही वॉज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड ऑन द घटम बाय विद्वान श्री M हरिबाबू। Violin support was given by Sri Saket Pandula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
3: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी

0: विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of all. Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61 kg category, defeating Kazakhstan Asil Atkan 6-0 in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर. स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं. हमारी आज की प्रसारण सभा अब संपन्न होती है. कल प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी. तब तक दीजिए अनुमति. जय हिंद.